FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5 बजकर

0: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आस्था के स्वर।
1: आस्था के स्वर।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आस्था के स्वर। कार्यक्रम का अगला स्वर चित्रा सिंह का, सुनिए इनकी आवाज में पारंपरिक भजन।

0: शर्मा बंधुओं की आवाज में अभी आपने राम भक्ति गीत सुना। इसी के साथ अब आज का आस्था के स्वर कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आस्था के स्वर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आस्था के स्वर। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन। इसमें सुनिए स्वामी आत्मानंद के विचार उन्हीं की वाणी में।
1: संसार में ऐसा कौन मनुष्य होगा जो चिंता न करता होगा? चिंता तो मनुष्य के स्वभाव में है। कोटिपति से लेकर पथ के भिखारी तक सभी इस चिंता ताप से तप्त रहते हैं। जब मैं बालक था तब लगता था कि जो बंगले में रहता है, कार में इधर उधर आना जाना करता है, जिसके इशारे पर दर्जनों नौकर नाचते रहते हैं, वह निश्चिंत और सुखी होता होगा। पर अब जब इस श्रेणी के बहुत से लोगों से परिचित होने का मौका लगता है तो देखता हूं कि मेरी पूर्व धारणा गलत थी। ऐसे व्यक्ति भी चिंताग्रस्त रहते हैं, बल्कि यदि ऐसा कहें कि गरीब या सामान्य व्यक्ति की तुलना में ये धनपति अधिक चिंताग्रस्त रहते हैं तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। चिंता को चिता कहकर पुकारा गया है। चिता की आग के समान यह चिंता भी जलाती है। अंतर इतना है कि चिता की आग बाहर दिखाई देती है और उसे जल डालकर बुझाया जा सकता है, पर चिंता की आग दिखती नहीं, वह भीतर ही भीतर सुलगती रहती है और व्यक्ति को सतत जलाती रहती है। वह मन की आग है और इसलिए वह बाहर के जल से शांत नहीं होती। उसे बुझाने के लिए मन का ही जल चाहिए। मन के जल का मतलब है मानसिक वृत्ति। चिंता यदि एक मानसिक वृत्ति है तो उसको बुझाने वाला जल भी मानसिक वृत्ति ही है। हमारा सोचने का गलत तरीका चिंता को जन्म देता है और सोचने का सही तरीका उसे बुझाने वाले जल का काम करता है। कुछ लोग छोटी छोटी बात पर चिंतित हो उठते हैं। बच्चा यदि स्कूल से लौटने में तनिक विलंब कर दे तो माता पिता चिंता से परेशान हो जाते हैं। यदि लड़का बाहर किसी शहर में पढ़ता हो और 7 दिन उसकी चिट्ठी नहीं आई तो माता पिता अनमने हो जाते हैं और उनकी यह चिंता उनके समस्त व्यवहारों में झलक

0: छूटने लगती है। जब तक परीक्षा का घोषित नहीं होता है, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो चिंता के मारे न तो पेट भर खा पाते हैं न सो पाते हैं। यदि लड़का फीस पटाने के लिए रुपया ले जा रहा हो तो माता पिता को चिंता लगी रहती है कि वह पैसा कहीं गुमा तो नहीं देगा, और जब तक लड़का लौट आकर फीस की पावती नहीं दे देता तब तक वे स्वस्ति की सांस नहीं ले पाते। किसी को यही चिंता बनी रहती है कि उसकी चीजें चोरी तो नहीं चली जाएंगी। कोई चिट्ठी पाने की चिंता में बार बार घर से बाहर निकलकर डाकिये का रास्ता जोहता रहता है। कॉलेज के दिनों में मेरा एक सहपाठी था जो मेरे साथ छात्रावास में रहा करता था। उसे चिट्ठी की ऐसी चिंता सताती थी कि सुबह से डाकिये के इंतजार में न तो कुछ पढ़ सकता था और न कुछ कर ही सकता था, और चिट्ठी न आने पर उदास हो जाता और बाकी दिन भी वह फिर पढ़ नहीं पाता था। ये मात्र कुछ उदाहरण है। तो चिंता किसी समस्या का हल नहीं करती, अपितु वह एक नई समस्या पैदा कर देती है। आज असंख्य लोग चिंता के कारण सो नहीं पाते, उन्हें नींद की गोली लेनी पड़ती है। तो क्या चिंता का निदान नहीं है? है, और वह है स्वस्थ चिंतन का अभ्यास। हमारा दिल और दिमाग जितना मजबूत होता है हमें चिंता उतनी ही कम सताती है। दिल और दिमाग की मजबूती का मतलब है विधेयात्मक और रचनात्मक विचार करने की मन में आदत डालना, सोचने का निषेधात्मक तरीका आशंकाओं और कुशंकाओं को जन्म देता है। किसी भी मुद्दे के केवल अंधकार में पक्ष को देखना चिंता के लिए खाद का काम करता है। जब हम सोचेंगे तो अवश्य ही पक्ष और विपक्ष दोनों पर विचार करेंगे, पर केवल विपक्ष का, निषेधात्मक पक्ष का ही चिंतन करना चिंता को जन्म देता है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में चिंता एक रोग है जिसकी चिकित्सा की जानी चाहिए। यदि समय पर इलाज न किया गया तो वह अनिद्रा, तनाव और हताशा को जन्म देती है। इलाज है अपने को स्वस्थ विचारों और विधेयात्मक कार्यों में हरदम लगाए रखना।
1: चिंतन में अभी आप सुन रहे थे स्वामी आत्मानंद के विचार, उन्हीं की वाणी में। आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान में आज का प्रसंग।

राजा जनक की नगरी देखने के क्रम में पुरवासियों के मन मोहते हुए श्रीराम अपने अनुज लक्ष्मण के साथ नगर के पूर्व भाग में पहुंचते हैं, जहां धनुष यज्ञ की रंगभूमि की रचना की गई है। जनकपुर के बालकगण बड़े उत्साह तथा आदर के साथ दोनों भाइयों को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे हैं। श्रीराम ने अपनी मधुर मनोहर वाणी में अनुज लक्ष्मण को यज्ञ भूमि का परिचय दिया और दोनों भाई सारा कौतुक देख गुरु के पास लौट चले।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, स्वर सुरेश वाटकर का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा। लीजिए अब सुनिए कृषि चर्चा, वाचक स्वर ओम प्रकाश चौरे का।
1: किसान भाई बहनों, आज का कृषि चर्चा में हम बात करांगा परिवार और पर्यावरण के लिए खतरनाक रासायनिक खेती के बारे में। वाचक स्वर छे ओम प्रकाश चौरे को। सबका हमारी राम राम। भारत का स्वास्थ्य का क्षेत्र में इस वर्ष 11% की वृद्धि देखी गई और इका कई कारण भी सकत। जहां एक ओर किसान भाई की संख्या साल दर साल घटती जा रही, वहीं दूसरी ओर अस्पताल की संख्या बढ़ती जा रही। छोटा कस्बा तक सर्व सुविधा युक्त अस्पताल की शाखा न खुली रही। एक कृषि प्रधान देश में जहां खेती करने वाला की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए, वहां अस्पताल की संख्या बढ़नों साफ संकेत देच कि हमारा देश स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझी रोज। अब सवाल उठा कि क्या रासायनिक खेती इकले या जिम्मेदार भी सकत। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मार्च में कई राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि कारण किसान भाइयों को भारी नुकसान हुए। पिछला 10 वर्षों का आंकड़ा देखा तो मार्च में किसान भाइयों का इस प्रकार का नुकसान को सामना करना पड़ी रोज। जलवायु परिवर्तन के कारण धरती को तापमान तेजी से बढ़ी रोज और मौसम को संतुलन बिगड़ी रोज। जहां वर्षा होनी चाहिए वहां सूखो पड़ी रोज और जहां गर्मी होनी चाहिए वहां मूसलाधार बारिश हुई रोज। जहां परिवर्तन प्राकृतिक चक्र का बिगड़ने का परिणाम छे, जो हमें साफ संकेत दे रोज कि पर्यावरण को लेकर हमारी लापरवाही अब एक गंभीर समस्या बनी चुकी। हर व्यक्ति जाने कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हुई चुके। जो भोजन हम खाई रहे वो मिलावटी और रासायनिक पदार्थ युक्त छे। बढ़ती बीमारी और बिगड़ता पर्यावरण का मुख्य कारण में बेतरतीब उद्योग का निर्माण, कृषि योग्य जमीन पर कॉलोनी और फैक्ट्रियों का निर्माण, बड़ा बड़ा बांध का निर्माण, जंगल और पहाड़ों का उत्खनन, इनका सभी कारण का साथ साथ रासायनिक खेती भी पर्यावरण और स्वास्थ्य पर भारी असर डाली रही। इतनी भागदौड़ सी आपका हासिल जी हुई रोज कि हम आज टेक्नोलॉजी का चरम युग में जी रहे, लेकिन हमारा पास न तो शुद्ध और पौष्टिक भोजन छे और न ही शुद्ध पर्यावरण। एक सफल उद्योगपति या आईटी प्रोफेशनल, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, क्रिकेटर, अभिनेता, किसान या फिर देश को गरीब या मिडिल क्लास नागरिक, क्या उनका पास शुद्ध भोजन और शुद्ध पर्यावरण की व्यवस्था छे? एगो सबसे बड़ो कारण छे हमारा खेती और पर्यावरण के प्रति सुस्त रवैयो। हम कृषि और किसान का समझान कि हमारा लिए उपलब्ध रहे, फिर चाहे हम उनका साथ कितनों भी क्रूर व्यवहार करा, लेकिन इस रुख को ज़्यादा समय तक सहन नहीं किया जाएगा। प्रकृति ने तो अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दियो। दूसरी ओर किसान भी सोचने लगे कि जब देश की जनता हमारी चिंता नहीं करती तो हम शुद्ध और रसायन युक्त भोजन उगाने के लिए मेहनत करा। भारत सरकार और राज्य सरकार जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही और ये प्रयास धरातल पर ठोस परिणाम भी दे रहा है, लेकिन रासायनिक खाद की खपत और कीटनाशक विक्रेता बढ़ी रहा है जी दर्शावत

0: रासायनिक खेती को छोड़नो कितो मुश्किल हुई गोच। सरकार को किसान कह प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए ठोस और दूरदर्शी योजना बनाना की जरूरत छे। साथ ही एक सफल पायलट प्रोजेक्ट का राज्य सरकार जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही और ये प्रयास धरातल पर ठोस परिणाम भी दे रहा है। लेकिन रासायनिक खाद की खपत और कीटनाशक विक्रेता बढ़ी रहा है जी दर्शावत कि रासायनिक खेती को छोड़नो कितो मुश्किल हुई गोच। सरकार को किसान कह प्राकृतिक खेती की ओर प्रेरित करने के लिए ठोस और दूरदर्शी योजना बनाना की जरूरत छे। साथ ही एक सफल पायलट प्रोजेक्ट
1: का श्रोता से आरती शर्मा की बातचीत। 7:20 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित भीम सेन जोशी का शास्त्रीय गायन राग यमन कल्याण पर आधारित। सुनहरे पल कार्यक्रम सुबह 7:30 पर और सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:15 पर। आठ बजकर 30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत। आकाशवाणी भोपाल से सुबह 10 हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी और समन्वित कार्यक्रम डगर विकास की इसे भी आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। प्रसारण समय रहेगा रात्रि 8:15। हमारे बाल श्रोताओं के लिए होगा उनका पसंदीदा कार्यक्रम बाल जगत 10:35 पर। इसमें बच्चे सुने कहानी जादुई पेंसिल, कहानीकार महक जैन। साप्ताहिक कार्यक्रम फोन करें गीत सुने सुबह 10:05 पर। प्रस्तुति होगी नीलम त्रिपाठी की। शाम 5:30 पर आनंद लीजिएगा निमाड़ी लोकगीतों का और शाम 6 युववाणी कार्यक्रम में आज का आकर्षण होगा क्रम हेलो फ्रेंड्स। शाम 6:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत।

शाम 7:21 पर खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान श्रोताओं के लिए लेकर आएंगे भेंट वार्ता। गर्मी में फूलों की खेती जानकारी देंगी शिवानी दशोरे, फ्लोरिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग पीएचडी में अध्ययनरत छात्रा। भेंटकर्ता निरुपमा मिश्रा। सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे तक, दिन में 11 बजे से शाम 5:30 तक और रात 8 बजे से 8:15 तक व रात 9 बजे से रात 11 बजे तक आनंद लीजिएगा राष्ट्रीय विविध भारती सेवा के कार्यक्रमों का। तो ये थी जानकारी शेष कार्यक्रमों के संदर्भ में जो आज प्रसारित होंगे।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। आज की ताजा खबर में पेश है समाचार पत्रों की सुर्खियां। समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए जन परामर्श एवं सुझाव पोर्टल लॉन्च। 15 जून 2026 तक आए आम जन दर्ज कर सकेंगे अपने सुझाव और मत। विदेश में प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले मध्य प्रदेश के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विदेश अध्ययन छात्र

प्रवृत्ति योजना के अंतर्गत सत्र 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थी 25 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 11 मई से प्रारंभ होकर 25 मई 2026 शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। आज सिविल लाइन्स क्षेत्र में बिजली मेंटेनेंस हेतु 3 घंटे बिजली प्रदाय बंद रहेगा। साथ ही एनवीडीए कॉलोनी, रतागढ़, कनक नगर, साकेत नगर, कलेक्टर चौराहा, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी में भी विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। खंडवा शहर में 28 मई 2026 को ईदगाह समेत शहर की 44 मस्जिदों में अदा की जाएगी ईद उल जुहा के लिए नमाज और शहर काजी ने सभी मस्जिदों में नमाज के लिए तय किया समय। आईपीएल 19 में आखिरकार पंजाब किंग्स ने हार का सिलसिला खत्म करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराकर लगातार 6 हार के बाद जीत दर्ज की। भारतीय महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक होगा। मुकाबला इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। और एक नजर मौसम के हाल पर, कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचारों का संकलन किया तृप्ति सोनी ने। भारतीय महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 12 जून से 5 जुलाई तक होगा। मुकाबला इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। और एक नजर मौसम के हाल पर, कल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। समाचारों का संकलन किया तृप्ति सोनी ने।

0: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का खंडवा केंद्र। सजन रेडियो
1: बजाइयो बजाइयो बजाइयो सारा। जी हाँ साथियों, तो सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन
0: आकाशवाणी खंडवा।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम हमारे श्रोता। आज इस कार्यक्रम में मिलिए हमारे खंडवा के श्रोता भूपेंद्र सिंह कुकरेजा से। इनसे बातचीत की है आरती शर्मा ने।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक मिंटू भाई की सिंह वॉच कंपनी बॉम्बे बाजार खंडवा। घड़ियाँ चाहिए तो चले आइए सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की लेटेस्ट मॉडल की घड़ियाँ, आपकी विश्वसनीयता का प्रतीक। मिंटू भाई की सिंह वॉच कंपनी बॉम्बे बाजार खंडवा। हमारे श्रोता कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं हमारे एक बहुत पुराने श्रोता, तो आइए मिलते हैं खंडवा के हमारे श्रोता मिंटू भाई सिंह वॉच कंपनी वाले। तो बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार मिंटू भाई।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप जो हैं मिंटू भाई के नाम से कैसे फेमस हुए?
1: भाई मेरा घर का नाम मिंटू है, वैसे भूपेंद्र सिंह कुकरेजा है
0: जी।
1: पहले तो मैं खांडा वन की इस पवित्र धरा में सभी रेडियो श्रोता मित्रों को भूपेंद्र सिंह कुकरेजा मिंटू भाई का नमस्कार बोलता हूँ।
0: मिंटू भाई कैसे रेडियो से जुड़ना हुआ आपका?
1: मैं पहले तो घड़ियों के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, मेरी पत्नी श्रीमती स्वर्ण कौर कुकरेजा भी इस कार्य में मेरी सहयोगी है। बहुत पुराना श्रोता हूँ और रेडियो सुनता आ रहा हूँ मैं।
0: तो हम जानना चाहेंगे कि कब से ये रेडियो सुनने का शौक जागा?
1: आज मैं सीनियर सिटीजन में आ चुका हूँ, जाहिर है मैंने जब से होश संभाला तब से रेडियो सुनता आ रहा हूँ। भारत में सर्वप्रथम रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन का साधन हुआ करता था
0: जी।
1: संपूर्ण गतिविधियों का आंखों देखा हाल रेडियो से ही प्रसारित किया जाता है। यहाँ तक कि गांव में एक रेडियो हुआ करता था जिसको चौपाल पे रख के और चारों साइड सब बैठ के सुनते थे।
0: हाँ।
1: कि रेडियो फरमाइशी प्रोग्राम आएगा या किसान वाणी आएगा या खेती गृहस्थी आएगा, जो भी ये सब प्रोग्राम आएंगे सब बड़े चाव और लगन से सुनते थे।
0: ऐसा कुछ याद है आपको कि सबसे पहले आप किस रेडियो स्टेशन से जुड़े?
1: हम सबसे पहले तो SLBC से जुड़े थे, श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग आता था जिसमें अमीन सहनी जी आया करते थे
0: जी।
1: उसके बाद आकाशवाणी इंदौर से जुड़े हैं जिसमें निम्मी माथुर वगैरह सब उद्घोषण हुआ करते थे और संडे के संडे रविवार उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम आया करता था, अच्छी सहेली काफी प्रोग्राम बहुत अच्छे अच्छे आते थे
0: जी।
1: तो वो इंदौर सुना करते थे जब खंडवा स्टेशन प्रारंभ नहीं हुआ था
0: जी। और खंडवा स्टेशन प्रारंभ होने के दिन आपको कैसे अभी स्मृति में है?
1: जब से खंडवा स्टेशन की स्थापना और लोकार्पण हुआ तब से मैं फिर खंडवा का ही फैन हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ एकदम क्लियर आवाज और बिल्कुल सभी बिल्कुल क्लियर है। तो आरंभ में आशीष दवे, आलोक जोशी, प्रोफेसर मिश्रा जी की बेटियां निम्मी मिश्रा आदि इस केंद्र से आवाज, उनकी आवाज का जादू चलता था जो पूरे देश में चला करता था और हम भी काफी फैन हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पे दुकान पे ग्राहकी चलते हुए भी गाना चलता रहता था तो सामने से लोग रेडियो लेके निकलते थे तो ऐसी मधुर आवाज हो जाती थी कि आप टेप और टीवी सुन के भी वो आनंद नहीं आता था जो रेडियो सुनने पे आता था।
0: क्या बात है जी। तो कौन कौन से कार्यक्रम आप सुना करते थे और अभी भी आप कुछ कार्यक्रम सुनते हैं?
1: हाँ बिल्कुल सुनते हैं, आकाशवाणी के जैसे हमारा एक गुड मॉर्निंग क्लब है खंडवा।

0: अगर जिसमें हम सुबह सुबह योगा मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं तो
1: जी
0: उस हिसाब से हमको गुड मॉर्निंग खंडवा सबसे ज्यादा बेहद पसंद है।
1: क्या
0: गुड
1: बात है,
0: मॉर्निंग खंडवा, विविधा, एक ही फिल्म, सुनहरे पल, युवानी, सुनहरे पत्र, राग रंग, आपके मीत ये गीत, ये हमारे काफी जो है पसंदीदा प्रोग्राम है।
1: अच्छा तो मिट्टू भाई, हम ये जानना चाहेंगे कि अब रेडियो आपका नाम कार्यक्रमों में नहीं आ रहा है, तो इसका क्या कारण है? आपने ये कार्यक्रमों से सुनते हैं फिर भी एक दूरी सी बनी है।
0: नहीं, दूरी सी बनी है, लेकिन अभी क्या है कि हम अपने बिजनेस में इतने व्यस्त रहते हैं, सुनते तो हम अभी भी हैं,
1: जी
0: लेकिन हम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं दे पाते। लेकिन हमारे कई मित्र हैं, जैसे संजय पंचोलिया, संजय मार्कंडे, ये लोग अभी भी हमारे नाम की भी फरमाइश भेजते हैं। सुभाष खंडाले हैं, कई मित्र हमारे जो है अभी भी फरमाइशें भेजते हैं, वो हमारे नाम की भी भेजते हैं, लेकिन हम सुनते जरूर है।
1: मिंटू भाई, थोड़ा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में और अपने व्यवसाय के बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं।
0: मैं घड़ियों का व्यवसाय करता हूँ
1: जी
0: और घड़ियों व्यवसाय में मेरी पत्नी भी सामने आके सहयोग करती है, मेरा बेटा रमनदीप करता है,
1: जी
0: बेटी जो है मेरी वो लंदन में रहती है, तो वहां से कुछ डिजाइन नए आते हैं तो वो भेजती है हमको कि इस टाइप के वॉचेस रखिए, हम उस टाइप के वॉचेस रखते हैं। सभी तरह की हमारे पास घड़ियां रहती है,
1: जी
0: दीवार घड़ियां भी रहती है, हाथ घड़ियां भी रहती है, सभी तरह की रहती है।
1: तो घड़ी का व्यवसाय करते करते जीवन में बिल्कुल घड़ी के साथ चलना, जिसको बोलते हैं कि कदम दर कदम एकदम अनुशासित रूप से चलना, ये भी जीवन में आ ही गया होगा मिंटू भाई।
0: जी बिल्कुल, आप जानते हैं प्राचीन समय से है कि समय बड़ा बलवान है,
1: हाँ
0: जिसने समय को पहचाना वो समय के साथ चला और कभी तकलीफ नहीं हुई है। इसलिए समय के साथ चलो और समय को पहचानो, समय को अनदेखा न करो, हमेशा समय के साथ रहो। तो इसलिए घड़ी जो है वो बहुत महत्व की कीमत है। कई बार हमारे पास सुबह सुबह बाहर ग्राहक खड़े रहते हैं तो हम बोलते भाई इतनी सुबह कैसे के? बोले जब हम रात को 3 बजे उठ गए, हमारे पास घड़ी खराब हो गई थी, तो हमको 3 बजे के बाद टाइम नहीं पता लग रहा था कि क्या हो रहा है, 4 बज रहे, 5 बज रहे, कितने बज रहे। जब तक सुबह नहीं हुआ हम परेशान हुए, इसलिए हम सबसे पहले घड़ी खरीदने आ गए।
1: जी मिट्टू भाई, और क्या क्या शौक रखते हैं आप? जैसे होता है जीवन में कि किसी को खेलों का शौक है, संगीत अच्छा सुनना पसंद है या कुछ और, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या शौक है आपके।
0: भाई संगीत तो हम काफी सुनते ही हैं, और आकाशवाणी में, युववाणी में अलग अलग प्रोग्राम आते हैं तो वो भी सुनते हैं, सभी तरह के। उसके बाद जैसे कुमार विश्वास है, इनकी जो गीत वगैरह है वो सुनते हैं, इनका कवि सम्मेलन सुनते हैं, ऐसे कई जो हैं वो अलग अलग जगह आते हैं। फिर उसके बाद हम सुबह सुबह गुरुद्वारा जाते हैं, गुरुद्वारे का कीर्तन सुनते हैं। कई बार आकाशवाणी लाइव प्रसारण करती है, वो भी सुनते हैं, जैसे हमारे गुरु नानक जयंती पे प्रसारण होता है, गुरु गोविंद सिंह जयंती पे प्रसारण होता है, ऐसे समय समय पे हमारे ज्ञानी जी जो प्रसारण करते हैं वो आकाशवाणी से प्रसारित होता है, जो हमको बहुत अच्छा लगता है।
1: तो जिंदगी को लेकर के क्या नजरिया है आपका, क्या फलसफा है, हमारे श्रोताओं से साझा कर सकते हैं आप?
0: हाँ बिल्कुल, जिंदगी में व्यवसाय करो, व्यवसाय के समय साथ साथ अपना मनोरंजन भी करो। अगर मनोरंजन आपका होता रहेगा तो आपका दिमाग स्थिर रहेगा, एक गलत जगह नहीं जाएगा। तो इसलिए संगीत के भी साथ में रहो, अपना व्यवसाय भी करो और मनोरंजन जरूर करो, चाहे किसी भी तरह का मनोरंजन हो। और उसके बाद सुबह सुबह योगा करो, आधा घंटा स्वस्थ जीवन जीने के लिए आधा घंटा घूमो, योगा करो, सभी बहुत अच्छी जरूरी चीजें हैं, और तभी आप समय के साथ रह सकते हैं, जो कि तुम सुबह जल्दी उठो।
1: तो मिंटू भाई, जानना चाहूंगी चलते चलते कि हमारे जो भी कार्यक्रम आप सुनते हैं आपको पसंद आते हैं, लेकिन यदि कार्यक्रमों के बारे में कोई सुझाव आप देना चाहें तो जरूर बताएं।
0: भाई अंत में हमारा सुझाव यही है कि आकाशवाणी में किसी भी कार्यक्रम को पुनः प्रसारित नहीं किया जाता। मेरा एक सुझाव है कि कार्यक्रम बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है, कम से कम उन्हें किसी भी कार्यक्रम को पुनः प्रसारित करने की कृपा करें, जिससे श्रोता सुंदर प्रस्तुतिकरण जो छूट गया है वो पुनः सुन सके। उसके बाद जो पत्रोत्तर कार्यक्रम होता है उसमें जो सुझाव रहते हैं उसमें से कम नहीं नहीं तो 2 सुझाव तो माने जाए, क्योंकि वो सुझाव भी काफी श्रोताओं के मानने लायक रहते हैं,
1: बिल्कुल
0: वो
1: बिल्कुल
0: सुझाव माने जाए।
1: जी। तो चलते चलते कोई संदेश यदि देना चाहें तो श्रोताओं को।
0: संदेश यही है कि समय से चले, वाहेगुरु के साथ चले, और समय का ध्यान रखे, और आजीवन के साथ मनोरंजन करे, और संगीत में भी रुचि रखे, संगीत सुने, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ये संदेश।
1: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, धन्यवाद आरती जी।

0: नमस्कार, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। खंडवा की शानदार जानदार जनता को मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिंह वॉच कंपनी, बॉम्बे बाजार, खंडवा।

0: बिल्कुल बिल्कुल
1: सुझाव माने जाए।
0: जी। तो चलते चलते कोई संदेश यदि देना चाहें तो श्रोताओं को।
1: संदेश यही है कि समय से चले, वाहेगुरु के साथ चले और समय का ध्यान रखे और आजीवन के साथ मनोरंजन करे और संगीत में भी रुचि रखे, संगीत सुने, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ये संदेश।
0: हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद आरती जी। नमस्कार आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। खंडवा की शानदार जानदार जनता को मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिंह वॉच कंपनी बॉम्बे बाजार खंडवा। घड़ियाँ चाहिए तो चले आइए सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की लेटेस्ट मॉडल की घड़ियाँ आपकी विश्वसनीयता का प्रतीक मिंटू भाई की सिंह वॉच कंपनी बॉम्बे बाजार खंडवा।

0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। त्विषा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair

0: ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगा दशमी पर्व पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सीधी की ओर से परिजनों को 20-20 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आईपीएल में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2:30 बजे और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्त्री रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। ट्विशा शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए पंडित भीम सिंह जोशी का शास्त्रीय गायन, राग यमन कल्याण पर आधारित है।

श्रोताओं, आधुनिक सुख सुविधाओं ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है, ये बात तो आप भी मानते हैं ना। इसीलिए जिंदगी खूबसूरत है और आरामदायक भी है।

भाई इतनी भीषण गर्मी के दौर में हमें पंखे, कूलर, एसी जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये गर्मी आसानी से हम काट पाते हैं, वरना तो मुश्किल हो जाए। हाँ, गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हैं, तो अपने परिवारजनों से मिलने के लिए और उनके साथ मिलजुल कर समय बिताने के लिए परिवहन के साधन भी उपलब्ध हैं, जिससे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं और अपने परिवारजनों से आसानी से मिल लेते हैं, तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगने लगती है ना। तो सुख दुख बांटने के लिए परिवारजनों का होना भी ज़रूरी है ना। तो चलिए एक गीत सुनते हैं जो इसी से जुड़ा हुआ है।

0: पराग जी, मैं सोच रही हूँ कि ये जो अब नया सत्र शुरू होने वाला है तो क्यों ना मैं भी अपना एक नया काम कर लूँ।
1: कौन सा काम?
0: मैं सोच रही हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट डाल लिया जाए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो।
0: पर मैं अपने काम का प्रचार प्रसार कैसे करूँ?
1: कैसी बात कर रही हो, आकाशवाणी के माध्यम से करो।
0: हाँ, आकाशवाणी तो मैं रोज सुनती हूँ।
1: रोज सुनती हो तो उस पे विज्ञापन दे सकती हो, या फिर तुम किसी कार्यक्रम को भी प्रायोजित कर सकती हो।
0: अच्छा, कौन सा कार्यक्रम?
1: जैसे हमारे श्रोता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता अपनी प्रतिभा को भी अपनी बातचीत के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं।
0: मतलब मैं अपने कोचिंग की विस्तृत जानकारी श्रोताओं तक इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा सकती हूं।
1: बिल्कुल, और इसके अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं जिन्हें आप प्रायोजित कर सकती हो, और साथ ही साथ इन कार्यक्रमों में अपनी संस्था के विज्ञापन भी दे सकती हो।
0: ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है।
1: तो कब जा रही हो आकाशवाणी खंडवा?
0: अभी।
2: आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनहरे पल। तो श्रोताओं, सुनहरे सुनहरे गीतों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन एक शख्सियत है जिसे याद करेंगे हम आज, जिनकी है पुण्यतिथि। वो है गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। उनके लिखे गीत आज भी दिल को छू जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं का लिखा मेरे सनम फिल्म का ये गीत।

तो श्रोताओं, इतने बेहतरीन गीत जो उन्होंने दिए, एक लंबे दशक तक हिंदी फिल्म सिने जगत पर उन्होंने राज किया और अपनी कलम से बेहतरीन गीतों की रचना की। सुनते हैं एक और ऐसा ही गीत जो कि भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि इसका गीत ही नहीं बल्कि संगीत भी लाजवाब है। तो सुनवाते हैं आपको ये मजरू सुल्तानपुरी की कलम से लिखा बेहतरीन गीत।

तो श्रोताओं, कारवा फिल्म का ये बेहतरीन संगीत जो आप सुन रहे हैं, संगीत यह है आर डी बर्मन ने और इस गीत के रचनाकार मजरूह सुल्तानपुरी, जिनका निधन 24 मई 2000 को हुआ। लेकिन वे अपने पीछे गीतों की ये विरासत छोड़ गए जो आज भी उनकी याद में हमारे बीच जिंदा है। इनका प्रारंभिक जीवन जो है वो कुछ इस तरह था कि संघर्षों से भरा 50 वर्ष से अधिक वर्षों में उन्होंने करियर में करीब करीब 250 से ज़्यादा फिल्मों के लिए सदाबहार गीत लिखे और अपने संघर्षपूर्ण जीवन में आगे बढ़ते हुए दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें मिला, इनसे सम्मानित हुए वर्ष 1993 में। तो बेहतरीन गीतों की जो संरचना उन्होंने की है वो आज भी हमारे बीच है, तो सुनवाते हैं आपको एक और बेहतरीन गीत।

यादों की बारात इस फिल्म का है ये गीत। संगीत है आरडी बर्मन का, आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। और सच में कलम का जादू ऐसा है मजरूह सुल्तानपुरी साहब का कि दिल को चुरा ही लेता है।

श्रोताओं, जैसा कि कार्यक्रम के आरंभ में हम बात कर रहे थे कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत सी है, आरामदायक है, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है, तो आपको बता दें कि ये सारा जो सुख सुविधाएं हैं ना, वो ऊर्जा की वजह से हैं हमारी। अगर एक दिन हमारे घर में लाइट ना हो तो हमारा क्या हाल होगा, ज़रा सोचिए। तो बस आप ध्यान रखिए कि ऊर्जा की बचत पर आपका सही सही निर्णय हो। अगर आप एसी चलाएं तो तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक रखें। एलईडी बल्बों का प्रयोग करें और ऊर्जा को बचाएं, बिजली बचाएं, प्रकाश फैलाएं, सुख रहें और खुश रहें, मस्त रहें। इसी कामना के साथ अब आज के कार्यक्रम को देते हैं यहीं विराम। इजाज़त दीजिए अपनी रेडियो सखी आरती शर्मा को। नमस्कार।

0: सुबह के 8 बजे हैं। अब समाचार प्रभात प्रसारित करेंगे।
1: बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक TCS दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों, चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
2: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
0: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

0: करने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे

0: समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इजराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमरीका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमरीकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटना स्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान ये कहना कि देश के नौजवानों को मिले ग्लोबल एक्सपोजर लोक सत्ते में है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं को ध्यान में रखते हुए ही हमने किए हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौते। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के भारत दौरे को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान कहता है, मोदी से मिले रूबियो, अमरीका आने का न्योता। नवभारत टाइम्स अनुसार, रूबियो से मिलकर पीएम बोले, बात से निकले संघर्ष का हल। रूबियो की भारत यात्रा पर दैनिक जागरण अपने संपादकीय में लिखता है कि उनके भारत दौरे की शुरुआत के बाद जिस तरह उन्होंने अपने समकक्ष से मिलने की परंपरा को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री से मुलाकात की, ये प्रतीत होना स्वाभाविक है कि वे दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ करने में विशेष महत्व दे रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह के महाप्लान स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर लोकसत्ते ने संपादकीय में लिखा है कि गृहमंत्री की ये परियोजना वक्त की नजाकत को देखते हुए समीचीन है कि भारत के लिए आवश्यक भी है। अखबार के अनुसार, घुसपैठियों को रोकने के लिए हमारी सीमाएं मुस्तैद और सुरक्षित होनी जरूरी है। केंद्र सरकार का जिमखाना क्लब की जमीन 5 जून तक सरकार को सौंपने का समाचार अमर उजाला सहित सभी अखबारों में है। पंजाब केसरी के अनुसार, सरकार का कहना है कि ये भूखंड रक्षा बुनियादी ढांचे को मजबूत और सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा की आंसर सीट की स्कैन कॉपी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दैनिक भास्कर ने विस्तार से दी है। देश का बड़ा हिस्सा भीषण लू की चपेट में, शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, गर्म हवाओं से मस्तिष्क और आंखों पर पड़ रहा है बुरा असर। पत्र ने चिकित्सकों की सलाह को भी प्रमुखता दी है कि गंभीर सिरदर्द, चक्कर आना

0: और बेहोशी जैसे लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। राजस्थान पत्रिका ने इस वैश्विक अध्ययन को प्रमुखता से दिया है कि मुंबई विश्वविद्यालय ने दुनिया को दिए 31 अरबपति। पत्र ने इसे भारतीय सपनों की जीत बताते हुए लिखा है, दुनिया में सबसे अधिक अरबपति बनाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची में ये 10वें नंबर पर पहुंच गया है।
1: धन्यवाद फरत। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी। स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक पीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी मध्य पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये खंडवा केंद्र है। सुबह के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। लीजिए सुनिए भूपिंदर और मिताली सिंह की आवाज में ये गजल।

आकाशवाणी खंडवा से इस समय आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में चंद सुगम संगीत रचनाएं।
1: ये है निमाड़ की सुरीली धड़कन
2: आकाशवाणी खंडवा।

0: इस समय सुबह के 8:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके मीत ये गीत।
1: आपके मीत ये गीत।
0: आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरती शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना गायिका आशा भोसले, संगीत था ओपी नैयर का, गीत रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और फिल्म का नाम फिर वही दिल लाया हूँ। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी हमारे इन सभी श्रोताओं ने, शनि मंदिर चौक खंडवासी दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, ईशान सैनी और कार्तिक सैनी, लक्कड़ बाजार खंडवासी ठाकुर भवानी सिंह बैस, रिया रोहन अंगद, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवासी आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी, फाल्गुनी जोशी, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, जिरनिया रतनपुर से जितेंद्र सिंह गौड़, नरेंद्र सिंह गौड़, सचिन, प्रीति, भावना, अंतिम, श्रुति, यशराज सिंह गौड़, दिव्यराज, किट्टू, सावी और रिधिमा, मोटका माफी जिलाखंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमाना और कनिका पटेल, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, खैल बाजार पानीपत से भावना मल्होत्रा, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का और इनके परिवार के अन्य सदस्य, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, कोलासर तालुका से नांदुरा से प्रमोद बगाड़ी, वर्षा बगाड़ी, प्रतीक और संकेत बगाड़ी, सनावत से दगड़ूजी सिंह, धर्मेंद्र सिंह, कलाबाई सिंह, सावित्री, निशा, आयुष, दीपांशु, आरुषि और लक्षिता सिंह, माता चौक खंडवा से राजेंद्र कटारे, अनीता कटारे, उदय, उज्जवल और मितांश कटारे, घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया और इनके परिवार के अन्य सदस्य, और एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक, परी, स्वाति, प्रयाग चौधरी और दीविका चौधरी। तो आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर था ये गीत।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना,
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: पेश है कार्यक्रम का अगला गीत।

0: बाहर आने तक इस फिल्म का गीत आपने सुना, अनुराधा पौडवाल, पंकज उदास और साथियों की आवाजें थी, राजेश रोशन की तर्ज थी। और श्रोताओं, यही थी हमारे आज के यादों की महफिल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। तो अपने रेडियो सेट को श्रोताओं जरा करीब लाइए, सुनिए कि आपको पुकारता है विविध भारती पर प्यारे प्यारे गीतों का कार्यक्रम सुरीला सफर, जहां होती हैं हमारी इबारतें और आपकी बातें, थोड़ी थोड़ी सी तलखी, कुछ कुछ प्यार, थोड़ा तकरार और बेशक हम और आप मिलकर तय करते हैं सुरीला सफर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, इसी की बात हमने आज की इबारत में की है। तो आपके लिए पढ़ देते हैं आज की इबारत। वैसे हमारे जो फेसबुक के साथी हैं वो तो देख ही चुके हैं कि आज की क्या इबारत है, और जो साथी नए जुड़ने वाले हैं उनसे हम बता दें कि आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.facebook.com/vbsmumbai और इस पते पर भेज सकते हैं अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। और अब ये है आज की इबारत। दिल का मौसम खुशगवार हुआ और कहने लगा, मेरे दिल जरा लहरा के चल। आशिकाना मौसम कहता है, इनसे शायद पहले सपनों में मिले थे। ये बिंदिया जब जब चमकती है, दिल से एक आवाज आती है कि ये तो तस्वीर है, और तस्वीर में वो बात कहाँ। कायनात को देखो तो जीने की तमन्ना जाग उठती है। काश कुदरत भी बोलती और कहती कि हमें भी तुमसे कितना प्यार है। खोलती ऐसे राज़ दिल जिन्हें छुपाना मुश्किल होता है। ऐसे में मुमकिन है कोई खफा हो जाए, फिर मिलने के बहाने कुछ सूझे और घर से निकल पड़े। दीवाना बनकर ढूंढा उनको जो बादलों की तरह बेकरार कर जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो चलते हैं। साथियों, एक मौसम दिल का भी होता है, जो जरूरी नहीं कि इस मौसम के साथ साथ चले। ये तो दिल का मौसम है, कभी खुशियों में लहराता है तो कभी रूठों को मनाता है, मन के फूल खिलाता है और सबको प्यार सिखाता है। तो चलिए चलते हैं आज इस अलबेले सफर पर, देखते हैं कि इस सफर पर आज किस किस से मुलाकात होती है। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

एक समय ऐसा था श्रोताओं, जब साइकिल पर खूब सवारी की जाती थी और देखा भी नहीं जाता था कि भाई फासला कितना है, यानी फासला थोड़ा भी हो सकता था, ज्यादा भी हो सकता था। तो साइकिल के बारे में आपका क्या कहना है, साइकिल से जुड़ी हुई बातें अगर आप चाहें तो हमसे जरूर साझा करें। आप सुन रहे थे जॉय मुखर्जी पर फिल्माया ये गीत, जो हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है, इशारा फिल्म का ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे कल्याण जी, आनंद जी की तर्ज थी, मुकेश का गाया ये गीत आप सुन रहे थे। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, आज खुशगवार मौसम में प्रकृति की खूबसूरती के दिलों की बात होने वाली है। ये बिल्कुल सही है कि जब दिल खुशगवार होता है तो हमारे आसपास की प्रकृति, जैसे हरी भरी वादियों, कल कल करती अविरल नदियों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिरते झरनों की आवाजें दिल को आशिकाना बना देती हैं, जिससे हर चीज में खूबसूरती नजर आने लगती है। वैसे अगर कहा जाए तो सुंदरता देखने वाली चीज में नहीं, बल्कि देखने वाले वालों के मन में होती है। इसलिए तो कहा गया है कि अगर मन चंगा हो तो कठौती में भी गंगा बसती हैं। यही कारण है कि उदास मौसम के विपरीत खिले हुए मौसम में हर चीज दिल को लुभाती है। आज की इबारत में ढूंढते रह जाओगे वाली बात नजर आती नहीं नहीं आ रही। आपने इशारों इशारों में सब कुछ लिख दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने कुछ गीत भी सुझाए हैं। वैसे हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम को देते हैं। और हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि दिल, मौसम, आशिकाना, बिंदिया, आवाज, तस्वीर, शायद, कायनात, तरन्नुम, तमन्ना, कुदरत, प्यार, राज, मुश्किल, मुमकिन, खफा, बहाना, घर, दीवाना, बादल, बेकरार, अच्छा, चलते, और कुछ गीतों की सूची भी इन्होंने दी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सभी श्रोता मित्रों को प्रणाम, आइए चलते हैं विविध भारती के सुरीले सफर में, कुछ रोमांटिक, कुछ ठंडे गीतों से इस दोपहर को यादगार बनाते हैं। वैसे तो सूर्य देवता अपनी तपिश से सारी दुनिया को जलाने की ठान कर बैठे हैं, हमारी विविध भारती ने भी ठान रखा है अपने गीतों की ठंडक से सबका मनोरंजन करने का। बस इंतजार है 1 बजे का। जी हाँ, तो कार्यक्रम शुरू हो चुका है, और अगर आप नहीं सुन रहे तो बस फटाफट आ जाइए रेडियो के पास, और कार्यक्रम तो शुरू हो चुका है। और एक और श्रोता लिखती हैं, आपकी जो पंक्तियां प्रेम के उस अनंत सफर का दर्पण है, जहां हर मौसम एक नई दास्तान सुनाता है, आंखों में सजे सपने, बिंदिया की चमक और कायनात की खूबसूरती मिलकर एक ऐसी गूंज पैदा करते हैं जो सीधे दिल को छू लेती है। बादलों

तरह बेकरार करके जानी। और अच्छा तो हम चलते हैं, का वो आखिरी मोड़ दिल को एक खूबसूरत की कसक और उम्मीद से भर देता है। ये एहसास दिलाता है कि भले ही दूरियां हों लेकिन इंतजार का ये सफर अपने आप में कितना हसीन है। जी हाँ, और बिल्कुल इस तरह हसीन है दिल का सफर, जब मन होता है दिल किसी और भी निकल लेता है, जहाँ दिल को सुकून मिलता है। और ऐसा ही सफर आज कुछ हम तय कर रहे हैं।

शुदा, साइकिल की यादें तो आपको बतानी ही हैं, साथ साथ आप ये भी बताइए कि ये जो गीत है वो एक टेंट के पास फिल्माया गया है, ऐसी कोई याद आपकी है क्या? क्योंकि टेंट में भी आपने कभी ना कभी रात या दिन जरूर बिताए होंगे।

ये जो आखिर में आप सुन रहे थे संगीत, ये पंछी की उड़ान यानी उसके पंख की आवाज़ थी श्रोता। और ऐसा शायद कभी आपके साथ भी हुआ हो कि आपने भी टेंट में रात बिताई हो या दिन बिताया हो या कहीं गए हो, खासकर अगर आपने पहाड़ों की सैर की है तो आप हमें ऐसे अनुभव बता सकते हैं, साझा कर सकते हैं। हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि खुशनुमा मौसम मन को सुकून देता है, हल्की ठंडी हवा, खिलते फूल और बादलों की छांव दिल को नई उमंग से भर देती है। ऐसे मौसम में पुरानी यादें और दिल में बसी कोई खास तस्वीर बार बार मुस्कुरा उठती है। दिल में बसी तस्वीर केवल किसी चेहरे की नहीं होती बल्कि उन प्यारे लम्हों की भी होती है जो जिंदगी को खास बना देते हैं। प्रकृति का सुंदर रूप इंसान को जीवन की भागदौड़ से कुछ पल राहत के देता है और मन को शांति का एहसास कराता है, और खुशगवार मौसम उन यादों को और भी खूबसूरत बना देता है। जी हाँ, और तभी तो हम ऐसे मौसम में खास प्रकृति की ओर चल देते हैं, और तब हम ये नहीं देखते कि मौसम कौन सा है, क्योंकि हमारे दिल का मौसम जो कह रहा होता है कि भाई अब चलिए कहीं और चलें। एक हमारी और श्रोता बताती हैं, जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा के पास एक साइकिल थी, उसे साइकिल पर बैठकर हमारे पापा सभी को स्कूल छोड़ देते थे। मुझे और मेरे दो भाइयों को मेरे पापा साइकिल पर ले जाया करते थे और पूरी फैमिली 5 जने साइकिल पर ही जाया करते थे।

सकते थे, कहीं भी जाते थे। और फिर जब मैं 12वीं कक्षा में आई तब मुझे स्कूल की साइकिल मिली थी, तब मैं साइकिल चलाया इन्होंने, और इन्हें बहुत खुशी हुई। क्या बात है। एक और श्रोता लिखती हैं कि जब पैर पैडल पर होते हैं और ठंडी हवा चेहरे को छूती है तो ऐसा लगता है कि मानो हम वक्त से थोड़ा आगे निकल आए हैं। साइकिल की सवारी सिर्फ एक जगह से दूसरे जगह जाने का जरिया मात्र नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक एहसास है। बचपन की पहली आजादी के एहसास से लेकर आधुनिक दौर में पर्यावरण को बचाने के आंदोलन तक साइकिल हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा रही है। एक और श्रोता लिखती है, सुंदरता आईने में नहीं इंसान के स्वभाव में दिखाई देती है। चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिल खूबसूरत ना हो तो सुंदरता अधूरी लगती है। असल खूबसूरती मुस्कान, सच्चाई और अच्छे व्यवहार में छुपी होती है, जो दूसरों के दिलों में जगह बना लेती है, वही सच में सबसे सुंदर होता है। सुंदरता रंग या चेहरे से नहीं, इंसान की सोच और उसकी सादगी से पहचानी जाती है। और कुछ लोग साधारण दिखकर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि उनकी रूह बहुत सुंदर होती है। जी हाँ, जब रूह सुंदर होती है तो ज्यादातर में ऐसा आता है कि मौसम चाहे जो भी हो, लोग चाहे जैसे भी मिले, बातें चाहे कोई भी कहीं जाए, लेकिन सुंदर लगता है और सब कुछ अच्छा लगता है। मन अच्छा है तो सब अच्छा लगता है, और यही है दिल का मौसम। एक और श्रोता लिखते हैं, वाकई में दिल का मौसम खुशगवार हुआ था जब मैं स्वयं परिवार सहित जून 2024 में कश्मीर गया था। मौसम तो आशिकाना था ही, और धर्मपत्नी की बिंदिया जब चमकती थी और मेरे दिल की आवाज भी लहरा कर कहने लगती, हर पल मजबूर था कि कश्मीर कुदरत का नायाब करिश्मा है। अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। जी हाँ, अगर फिरदौस बर्रोए ज़मीं अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्तो।

इस गीत के संगीतकार आपको बताने हैं श्रोताओं, और पाकीज़ा फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था, मीना कुमारी पर फिल्म आया गया, उस गीत के संगीतकार अगर आप बता दें तो क्या ही बात है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, क्या बात है, आपने जिस खूबसूरती से पुराने सदाबहार गीतों की पंक्तियों उनके भावों और उनके मुखड़ों को एक धागे में पिरोया है, उसे पढ़कर दिल सच में बाग बाग हो गया। ये सिर्फ एक पैराग्राफ नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर गोल्डन एरा का एक म्यूजिकल सफरनामा। आपके इस खूबसूरत पैराग्राफ को खंगालने के बाद आज के मुख्य शब्द जो हैं और उन पर आधारित सदाबहार गाने कुछ इस तरह निकल कर आते हैं, और बहुत सारे गीतों की बात इन्होंने लिखी है, उसमें से बहुत सारे गीत जो हैं वो मिलते भी हैं। जी हाँ, इनमें ये गीत भी है, मौसम है आशिकाना। एक हमारे और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में खूब साइकिल चलाई, बहुत बार साइकिल से गिरा, चोट खाई, पर साइकिल की सवारी नहीं छोड़ी, अब साइकिल की जगह स्कूटर ने ले ली है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी पहली साइकिल मुझे 1974 में मिली, जब कक्षा 8वीं में था, वो भी सेकंड हैंड 75 रुपए में खरीदी गई थी। जी हाँ श्रोता, और आगे लिखते हैं कि उस समय लगा जैसे मुझे हवाई जहाज मिल गया हो, इधर उधर बहुत चक्कर लगाया करता था। नई चीजें जब आती हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, और खासकर जो साइकिल थी उसका क्रेज तो कुछ अलग ही था। एक और श्रोता लिखते हैं कि इस गीत में कलाकार जॉय मुखर्जी, यानी पहले गीत की इन्होंने बात करी है, मुखर्जी साइकिल पर सवार हैं, और जिन लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमत ज्यादा लग रही है वो साइकिल पर सवार हो सकते हैं। जी हाँ, जहां तक कीमत की बात है, वो प्रकृति से तो उसकी तुलना नहीं की जा सकती। साइकिल पर सवारी प्रकृति को पूरी तरह से महफूज रखती है, तो अक्सर जब हम साइकिल चलाते हैं तो इस बात का जरूर हमें ख्याल रखना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों की दुनिया और खुशगवार मौसम में प्रीतम से मिलन अत्यंत भावपूर्ण मिलन श्रृंगार होता है, जहां प्रकृति और प्रेम का अद्भुत सामंजस्य होता है। ठंडी हवाओं का चलना, बादलों का अटखेलियां करना, एक संगीतमय मादकता वातावरण में घुली सी जाती है। प्रिय का स्वप्न में आना प्रेमियों के मन में विरह की पीड़ा को मिटाकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति से भर देता है। एक और श्रोता लिखते हैं, कुछ गीत सुनकर ऐसा लगता है जैसे दिल को सुकून की बारिश मिल गई हो, कुछ गाने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और दिल में ढेर सारी शांति छोड़ देते हैं, कुछ धुनें सुनते ही पुरानी यादें धीरे से सामने आ बैठती हैं, ऐसे गीत सुनकर लगता है जैसे कोई बहुत अपना पास बैठा हो, कुछ गाने दिल को इतना अच्छा लगता है, कुछ गाने इतने अच्छे लगते हैं कि उन्हें बार बार सुनने का मन करता है, जैसे नीले गगन के तले जिस पथ पर चला, छोड़ दे सारी दुनिया, और ये सारे गीत इन्होंने लिखे हैं, जो गीत इन्होंने अंदाज लगाए। वैसे हमारे आज जो श्रोता लोगों ने गीतों की जो लिस्ट भेजी है वो जबरदस्त है, और उसमें बहुत सारे गीत जो हैं आज के कार्यक्रम से मिलते हैं।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज आप सुन रहे थे दो रास्ते फिल्म का ये गीत। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं को लिखना बाकी है कि हमने पूछा था इस जोड़ी की आखिरी फिल्म कौन सी है। कुछ एक श्रोताओं ने प्रेम कहानी के बारे में लिखा है, देखते हैं क्या है। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं कल से एक लंबी यात्रा पर हूँ, गाड़ी की चाल तो सीधी रखे हूँ पर दिल लहरा के ही चल रहा है। कुदरत के हसीन नज़ारों को देखकर दिल का मौसम भी आशिकाना सा हो गया है। हम सब की तरह कुदरत भी सबसे बोलती है कि हमें तुमसे प्यार है, मगर उसकी ये आवाज़ कानों में भले सुनाई नहीं देती तो उसे दिल की गहराइयों से महसूस करने पर ही समझा जा सकता है। और ये उसी को महसूस हो सकती है जो प्रकृति को प्यार करे। जी हाँ, तो आप बताइए कि प्रकृति के लिए आप क्या करते हैं? क्या आपने पेड़ लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो वो कितना बड़ा हुआ है हमें बताइए, और किस चीज़ का पेड़ है? एक इन्होंने ही, जिनका अभी मैंने जिनकी बात पढ़ी, उन्होंने बहुत सारे गीतों की बात करी है। पहले मिले थे सपनों में, दिल लहरा के चल, बिंदिया चमकेगी, जो बात तुझ में है, देखते हैं कौन सा गीत आता है। तो

एक और श्रोता लिखती हैं, जिंदगी का सफर है ये, कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, लेकिन दिल का सफर तो सभी जान लेते हैं, सभी समझ लेते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैडम जी, आज के सुरीले सफर में सभी फेसबुक साथियों के साथ पुष्पमाला पहनकर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। 10 बजे के तापमान 31 डिग्री पर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य स्थल पर तैनात होकर शाम अवकाश होने तक अपना कार्य पूर्ण कर सकुशल अपने परिवार के साथ खुशी मनाएं। और शुभकामनाएं लिखी है इन्होंने। एक और श्रोता लिखती हैं कि 2 दिन से सच में दिल का मौसम खुशगवार बना हुआ है, हालांकि गर्मी का कहर बना हुआ है, लेकिन अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करना एक आत्मिक शांति देता है और दिल कहल उठता है, मौसम है आशिकाना। भाई, हमारे तमाम श्रोताओं ने बहुत सारी अपने दिल की बातें लिखी है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में स्कूल की तरफ से एनसीसी कैंप राजगीर में लगा था, उस दौरान एक रात टेंट में गुजारनी पड़ी थी, बहुत मजा आया था। जब अपने दोस्तों के साथ पहली बार घर से बाहर एक टेंट में रात गुजारी, वो दिन आज भी बहुत याद आता है। एक और श्रोता लिखते हैं कि सपनों में आना, दिल में समाना, प्यार किया है तुम बताना। और इन्होंने और भी बहुत सारे गीत लिखे हैं, और वैसे आप कोशिश करिए कोई ना कोई गीत तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें से तो कोई गीत नहीं मिलता। अपनी कोई यादगार तस्वीर आप बता सकते हैं।

कभी पुरानी नहीं होती, जब देखो उतनी ही नई नकोर लगती है। मगर तस्वीर में वो बात कहाँ जो तुम में है। ये सारी प्रकृति को देखो तो जीने की तमन्ना बरबस सिर उठाने लगती है। काश ये पेड़ पौधे भी बोलते, हमसे कुछ कहते। हम सब नहीं जानते कुदरत अपने कितने अंदर कितने राज समेटे हैं। आप चाहे जितना सोच लीजिए इस जीवन के बारे में, मगर बिना प्रकृति से जुड़े कुछ भी संपूर्ण नहीं है। ये बादल, ये दीवानापन, ये बेकरारी और कुछ अंतहीन सपनों के साथ आज चलते हैं एक और सुरीले सफर पर। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आपकी सुगम और सुंदर लिखावट देखकर मौसम के साथ दिल भी आशिकाना बन गया है। कुदरत का प्यार, जन्नत की तस्वीर जीने की तमन्ना बढ़ा रही है। यही आस नाराज बादलों का छुपा हुआ राज जानकर उन्हें सपनों में नहीं तो धरती पर सचमुच का सुरीला सफर करने को कह रही है। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता लिखती है, ये मौसम रंगीन समा, और कुछ गीत इन्होंने लिखे हैं, बिंदिया चमकेगी वगैरह। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज तो दिल का मौसम खुशगवार हो जाएगा, दिल भी झूम उठेगा और कहेगा लहरा कर चल दिल्ली में, क्योंकि गाना ही दिल्ली में फिल्माया गया है। खैर, पैराग्राफ को पढ़कर ही पैर थिरकने लग गए हैं कि कौन से गीत बजेंगे। मौसम तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन इन्होंने और भी अपनी बातें लिखी हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं और दिल का मौसम जैसे गीत आज की इबारत में शामिल हो सकते हैं। जी अभी चलने का समय नहीं हुआ है श्रोताओ, तो आप चलिए नहीं बल्कि कार्यक्रम से जुड़े रहिए। एक और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे कमेंट्स हैं श्रोताओं, आपको इस गीत के बाद बताते हैं।

वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गाइड से, और आपको बताना है कि इसका जो आखिरी अंतरा है वो किस ऐतिहासिक किले में फिल्माया गया है। और एक और हमने आपसे पूछा था कि क्या आपके दिल का मौसम कभी ये कहता है कि राजस्थान चलें और ऊंट की सवारी करें। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी लिखी हुई इबारत के चौथे नंबर का लिखा हुआ गीत भी शामिल, जो बात तुझ में है, और मेरी इबारत के बैक टू बैक दो गीत शामिल हुए, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता लिखते हैं कि जी हमने कई पेड़ लगाए हैं और अभी ज़रूर लगेंगे। हमारे घर में हमने गमलों में भी बहुत सारे पौधे लगाए हैं। सुबह सुबह जब उठकर फूलों को खिला हुआ देखते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और रोज़ मन भावन को भी अपने जो है घर का फूल चढ़ाते हैं, भगवान को भी। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आम का पौधा लगाया था, 5 साल हो गए, आज बहुत बड़ा हो गया है, मालदा आम भी लगाए हुए हैं। जी हाँ, आम का तो मौसम। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत सुंदर है, खूबसूरत गानों की तरफ इशारे भी कर रही है, समझ में तो आ रहे हैं पर मैं लिख नहीं रही हूं, सुनने का ही मजा लूंगी। ऐसा मत कीजिए, आप लिखिए भी जरूर। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं, लाहौर जाने के लिए तैयारी कर रहा हूं और निकलने वाला हूं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और श्रोता लिखते हैं, मौसम खुशगवार हो ना हो, सपनों में मिलेंगे, तस्वीरों से बात करेंगे तो आशिकाना दिल लहरा के चलेगा, कुदरत के ललाट पर सूरज रूपी बिंदिया चमकती है, कायनात के इस रूप को देख चीनी की तमन्ना उठती है, राज़े दिल छुपाना मुश्किल होगा तो बहाने से बताएंगे कि बादल बेकरार होके दीवाना होकर बरसेगा। और बहुत लंबी इबारत है।

सुरीला सफर कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। कुदरत फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में हेमा मालिनी और राजेश खन्ना पर फिल्माया गया ये गीत था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे राहुल देव बर्मन की तर्ज थी। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि हमारे यहाँ का मौसम बड़ा खुशगवार है, गर्मी भी है और धूप भी और मंद मंद हवा के झोंके भी आ रहे हैं, क्या पता शाम तक बारिश भी हो जाए। कुल मिलाकर सफर गीतों के साथ जिंदगी का भी सुहावना है। एक और श्रोता लिखते हैं कि कोरोना काल में ली गई साइकिल जैसे जीवन का हिस्सा ही बन गई। सुबह शाम एक दो घंटे जब तक साइकिल न चलाऊं चैन ही नहीं आता। सेवानिवृत्ति के बाद टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। जी हाँ, टाइम पास की जहां तक बात है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ इससे जो एक एक्सरसाइज होती है वो बड़ी अच्छी है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वैसे अभी मौसम तो खुशगवार नहीं है, लेकिन दिल का मौसम तो हमारे हाथ में है। सुरीला सफर में गाने सुनकर मौसम खुशनुमा हो जाएगा। आज इस इबारत में बहुत से गाने नजर आ रहे हैं और कुछ गीतों को भी इन्होंने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं, साइकिल चलाना मैंने कभी नहीं छोड़ा, आज भी साइकिल से बाजार घूमने जाता हूँ, घुटनों का व्यायाम हो जाता है। एक और श्रोता लिखते हैं, पाकीज़ा फिल्म के संगीतकार गुलाम मोहम्मद थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जो थी वो मीना कुमारी नहीं रही। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने बहुत साइकिल दौड़ाई है दिल्ली में, पूरा रिंग रोड नाप दिया जो पूरे दिल्ली के क्षेत्र को जोड़ता है।

श्रोताओ, आप फिल्म पहचाने और संगीतकार बताएं, और ये भी बताएं कि आपको कभी ऐसा लगा कि किसी खास जगह को ढूंढने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी।

हमारे श्रोताओं ने इस गीत के बारे में भी लिखा है। सूरज और चंदा फिल्म का गीत है, मोहम्मद रफी की आवाज में, और रीता अक्सर और संजीव कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, राजस्थान तो नहीं गई लेकिन अभी हाल में गुजरात के दीव में हमने ऊंट की सवारी की, थोड़ा डर भी लगा जब वो खड़ा होता और फिर बैठता है। एक और श्रोता लिखते हैं, फिल्म गाइड का गीत मेरी लिस्ट का पांचवा गीत है। एक लिखते हैं कि चित्तौड़गढ़ फिल्म में किले में फिल्माया गया ये गीत है। एक और श्रोता ने लिखा है, बचपन के दिनों में हमारे पास ऊंट होता था जो कुएं से पानी निकालने का काम के काम आता था और हम उस पर बैठकर घर से खेतों में और वहां से फिर घर आते थे। एक और श्रोता लिखती हैं कि हाँ, मेरा जाने का मन तो करता है राजस्थान, कभी शायद जा पाऊं। एक और श्रोता ने लिखा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़, उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर में हुआ था गाइड फिल्म का फिल्मांकन।

मिलो सजना इस फिल्म का गीत राजेश खन्ना और आशा पारेख पर फिल्माया गया। आपके सभी कमेंट्स सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

मित्रों, हम सभी अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हमें डर नहीं लगता, जहां सब कुछ आसान लगता है, जहां कोई जोखिम नहीं होता। उसी जगह को हम कंफर्ट जोन कहते हैं। लेकिन सच ये है कि जहां आराम शुरू होता है वहां तरक्की रुक जाती है। जरा सोचिए, अगर एक छात्र सिर्फ वही पढ़े जो उसे आसान लगता है तो वो कभी नई चीजें नहीं सीख पाएगा। अगर कोई खिलाड़ी सिर्फ आसान अभ्यास करे तो वो कभी महान खिलाड़ी नहीं बन सकता। अगर कोई इंसान हमेशा डर के कारण नए अवसर छोड़ता रहे तो वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। याद रहे, सफलता, आत्मविश्वास और बड़े सपने हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर मिलते हैं। सुनो तो जरा।

अगर जिंदगी में हमें कुछ बड़ा हासिल करना है तो डर और आराम दोनों को छोड़ना पड़ेगा। बेशक कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां कभी ग्रोथ नहीं होती। तमाम उदाहरण हैं सफल लोगों के, जिन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही सफलता हासिल की है, अपनी काबिलियत से देश दुनिया में इतिहास रचा है, संघर्ष किया है। अगर ये लोग डर जाते, मेहनत से बचते या आराम चुनते, तो शायद आज पूरी दुनिया इन्हें नहीं जानती। सच तो ये है कि डर हमेशा कंफर्ट जोन के दरवाजे पर खड़ा रहता है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे अगर हम असफल हो गए तो, अगर हमसे गलती हो गई तो। लेकिन हमें याद रखना होगा, गलतियां इस बात का सबूत हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं। असफलता बुरी नहीं होती, कोशिश छोड़ देना बुरा होता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें गिरना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा और खुद को बदलना भी पड़ेगा। अगर उड़ना है ऊंचा तो घोंसले की आरामदायक दुनिया छोड़नी ही पड़ेगी।

0: मित्रों, जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धियां हमेशा डर के दूसरी तरफ मिलती हैं। कहते हैं, आराम इंसान को कमजोर बना देता है और संघर्ष इंसान को महान बनाता है। सफलता कभी भी आरामदायक बिस्तर पर लेटे हुए लोगों को नहीं मिलती। सफलता उन्हें मिलती है जो रातों को जागते हैं, गिरते हैं, हारते हैं, लेकिन फिर उठकर लड़ते हैं। हमें खुद को पहचानना होगा और अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ना होगा।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेंजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांग चेंजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के

0: में चर्चा की।
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम इसका मास्टर प्लान बना रहे सिंगरौली के लिए और विकास के लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी आएंगे। और जिस प्रकार से हमने अपने निवेश और रोजगार को लेकर के गत वर्ष काम किया था, उसके बलबूते पर ये पूरे हमारे आसपास के जिलों को भी रोजगार यहाँ मिले, इस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं।
0: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी

0: का प्रबंधन कर रहे हैं।
1: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GSTC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हाल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मलोथर में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों

0: राष्ट्रों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉक्टर जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में हैं कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
1: We want peace and stability.
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
1: These would be the principles with which we would approach that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमरीका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमरीकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी @90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के

0: विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी कर्सियंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं के स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। CBSE के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जीरामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्तस्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी

0: पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के यूकी भामरी न्यूजीलैंड के माइकल विनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्र कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
0: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। खुशी पलों में होगा कार्यक्रम सदाबहार नवमी।

0: तलत महमूद की आवाज में सुजाता फिल्म का गीत था, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा, संगीत सचिन देव बर्मन का था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला राहुल देव बर्मन ने। किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल सुरों में आप सुन रहे थे दो चोर फिल्म का गीत।

हाजरा सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। लता मंगेशकर को आपने सुना, फिल्म थी ऊंचे लोग। विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना, माशा अल्लाह कह

0: नहीं है वल्ला जवाब।
1: पेइंग गेस्ट फिल्म में किशोर कुमार की आवाज आपने सुनी, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, सचिन देव बर्मन की तर्ज थी।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जी

जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: मोहब्बत इसको कहते हैं इस फिल्म का गीत था, मुकेश और आशा भोसले का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।
1: तस्वीर तेरी दिल में जिस दिल

फिल्म माया का दोगाना था मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया मजनू सुल्तानपुरी के बोलों को सुर में ढाला सलील चौधरी ने। यही थी आज के सदाबहार कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। श्रोताओं,

नमस्कार श्रोताओ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं। हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। तमाम व्यस्तता के बीच कहीं दोपहर में ठंडे शरबत की ताजगी है और खस की खुशबू और ऐसी ही ताजी हवा के झोंके सा आपके चुने हुए गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत आ चुका है आपके रेडियो सेट पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं

आज मन चाहे गीत कार्यक्रम में किन किन श्रोताओं के मन चाहे गीत शामिल हो रहे हैं। मन चाहे गीत प्रोग्राम में अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहा जिला यमुनानगर हरियाणा से जयपाल धीमान, यशपाल धीमान, विनोद और राजीव धीमान। इसी गीत के लिए फरमाइश की रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। और इस गीत को सुनना चाहते थे जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला अदवंत, नीलेश अदवंत, मयूरी अदवंत, कल्पेश अदवंत और संगीता अदवंत।

ये गीत आप सुन रहे थे द ट्रेन फिल्म से। मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन की तर्ज थी और इस गीत की फरमाइश की हंडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी और इसी गीत की फरमाइश की लीलाबेन, स्मिताबेन, भारती, निधि, सेजल, मनाली ने। ये हमारे श्रोता थे तेलहारा महाराष्ट्र से। और अब आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। नमस्कार।

0: वेरी वेल जोड़ी।
1: हाय फ्रेंड।
2: हाय,
1: क्या चल रहा है?
2: फिलहाल तो चाय और समोसे चल रहे हैं। अब आप आ गए हैं तो
1: चल चलो सुमित, उधर बैठते हैं खिड़की के पास।
3: वहाँ क्यों?
1: अरे भाई, आज शनिवार की शाम है, कोई डिनर के लिए जाएगा, कोई लोकल गार्जियन के यहाँ, कोई पिक्चर जाएगा और कोई शॉपिंग के लिए। तरह तरह की ड्रेसेस और साज सज्जा देखने को मिलेगी। आया जी।
2: हाँ बिटिया,
1: हमारी चाय यही दे देंगे ना?
2: लाई है बिटिया,
1: चल बैठ सुमित।
3: अरे यार, तुम्हारी बकबक से तो मेरा सिर दर्द करने लगता है।
1: तो ले चाय पी, एकदम गरम है। अरे सुमी, जरा रेशमा का जूड़ा तो देख।
3: कहाँ कहाँ? ओ जूड़ा? अरे ये तो एकदम अजंता की मूर्तियों जैसा केश विन्यास है।
1: वो दिख दो।
3: कहाँ?
1: तूने शायद शैम्पू किया है। वाह, कितने खूबसूरत बाल हैं।
3: एकदम वर्षा की घनघोर घटाओं की तरह।
1: सुमन, सुमी वो देख, वो देख सुमन देखो।
3: कहाँ?
1: अरे कितनी अच्छी लग रही है
3: सच में।
1: सफेद शरारा सूट और हवा में लहराती सफेद चुन्नी, क्या बात है।
3: अरे यार, ऐसे लग रहा है जैसे कोई हंसनी धीरे धीरे तैरती हुई चली जा रही है।
1: पर तंग आ गई मैं तुम्हारी कविता से। न कोई थ्रिल है, न कोई एक्साइटमेंट
3: है। क्यों नहीं? अरे तुम तो हो थ्रिल एक्साइटमेंट का जीता जागता रूप। गोरी गोरी दुबली पतली एक प्यारी सी बालिका, जैसे
1: कटनार की गली, यही कहेगी ना? ले समोसा खा।
3: गर्म गर्म खिला रही हो।

0: हाँ तो फ्रेंड
1: यस
0: मिस सुमी आपको अपनी एक नई कविता सुनाने जा रही है। ये कविता इन्होंने अपने प्रिय दोस्त चंदन के लिए लिखी है। बस ये भी चंदन जैसी है पर जरा साफ से बच कर है ना माय डियर फ्रेंड।
2: रीमा तू नहीं सुनेगी
0: तो सुनिए आप सब इनकी नई रचना तो शुरू हो जाइए मिस सुमी।
2: अरे यार समोसा खाने दो।
0: कोई नखरा वखरा नहीं चलेगा कम ऑन।
2: ओ रीमा अच्छा अच्छा तो सुन बस। खुशबू बिखेरता महकाता पवित्र करता नंदन कितना प्यारा कितना सुंदर है ये वृक्ष चंदन। ये चाहता है इसे आंखों में आंज लूं शब्दों में बांध लूं मन में समेट लूं कल्पना से संवार दूं कर लूं वंदन हे वृक्ष चंदन।
0: लो मेरी तो गाड़ी आ गई भाई मैं तो चली। चलेगी सुमी?
2: आज नहीं भैया आते होंगे उनका इंतजार करूंगी।
0: ओके बाय बाय फ्रेंड्स।

0: अरे नमस्ते भाई साहब।
1: अरे तू रीमा, लगता है संगत का असर आ गया है। हाय हेलो नहीं, नमस्ते। आज वो तुम्हारी कबूतरी नहीं आई?
0: कबूतरी? व्हाट डू यू मीन? यू मीन सुमी? देखिए भाई साहब, आप मेरी दोस्त का अपमान कर रहे हैं। अरे थोड़ी भावुक है बस, बच्चों जैसी मासूम है, हंसती है तो सुरीले तार झंकृत होते हैं, बोलती है तो जैसे कोयल कुहकुटती है, और चलती है तो
1: लगता है कोई हाथी झूम झूम कर चल रहा है।
0: अच्छा भैया, फिर आपने उसकी बेइज्जती की?
1: अरे भाई गजगामनी कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट।
0: अच्छा भाई, तो आप उसकी इतनी बातें क्यों करते हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है?
1: चक्कर और उससे? अरे बाबा डर लगता है। आती है तो कहती है, डॉक्टर साहब एक नया गीत लिखा है सुनिए। क्या करूं तुम्हारी दोस्त है, झेलना पड़ता है उसे। लिखती है, कितना मोहक कितना सुंदर है इन फूलों का जीवन, हंसना खिलना और शर्माना, महकाना धरती का कड़कण।
0: अच्छा और क्या कहती है?
1: कहती है, खिलती कलियां झूमती लताएं, तपस्वी से चंदन वृक्ष, सब मुझे बहुत अपने लगते हैं, जिस दिन बाग में न जाऊं वे उदास हो जाते हैं।
0: और आप कहिए तो प्रपोज कर दूं?
1: नहीं रीमा, बहुत भोली है वो, अधखिली अनछुई ओस में नहाई पावन कली की तरह, जिसकी पलकों में न जाने कितने सपने हैं। मैं इंतजार करूंगा।
0: समझ गई भाई साहब, मौका देखकर मैं जरूर बात करूंगी। अभी तो वो भी मगन होगी अपने भैया के साथ।
2: स्वामी बिटिया जी, वो भैया जी आए हैं।
0: अरे भैया आप, घर में सब लोग ठीक तो हैं? और डैडी की तबीयत?
3: बहुत अच्छी, घर में सब लोग अच्छी तरह से। वो तुझे मेरा तार नहीं मिला था क्या?
0: तार? वो तो नहीं मिला। खैर अब तो आप खुद ही आ गए हैं, बता दीजिए क्या लिखा था तार में।
3: यही कि रात की ट्रेन से हम लोगों का रिजर्वेशन है।
0: रिजर्वेशन?
3: हाँ, हमें आज ही बांदा जाना।
0: लेकिन क्यों, अभी तो मेरी छुट्टियों में एक महीना बाकी है और फिर मुझे परमिशन भी नहीं मिलेगी।
3: मैं तुम्हारी वार्डन से बात कर चुका हूँ, तुम जाकर अपनी पैकिंग कर लो, ठीक 8 बजे मैं टैक्सी लेकर आऊंगा।
0: लेकिन भैया अचानक ये सब क्या हो रहा है, मैं इतने दिन क्लासेस कैसे मिस करूंगी? साफ बताओ ना भैया क्या बात है।
3: तो सच कह दूं? तो सुन, पापा ने तेरे ब्याह की तारीख पक्की कर दी।
0: ब्याह?
3: इसी माह की 25 तारीख को तेरी शादी, और इसीलिए मैं तुझे लेने आया।
0: ये तुम क्या कह रहे हो भैया? देखो भैया, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता।
3: ये मजाक नहीं सुनी, सच है, घर में मेहमान भी आने शुरू हो गए।
0: वाह भैया, मुझसे पूछा भी नहीं और सब कुछ तय कर लिया।
3: देख सुमी, परेशान मत हो, तू तो जानती है पापा रिटायर होने से पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लेना चाहते हैं। अरे आखिरी का रईस घराना है, लड़का मैकेनिकल इंजीनियर है, 2 बार बाहर भी हुआ है।
0: ओ भैया,
3: सब ठीक ही है। और देख, रही तुझसे पूछने की बात, तो अपने खानदान में ऐसी परंपरा नहीं है, बड़े बूढ़े जो भी ठीक समझते हैं वही करते हैं।
0: हाँ तभी तो आप भुगत रहे हैं, रईस घराने की लाडली बेटी से पापा ने आपका ब्याह कर दिया।

0: की जिंदगी।
1: सुमी बस प्लीज दुखती रग मत छेड़, सब अपना मुकद्दर है। पर तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके घर वालों से मिल चुका हूं, बहुत अच्छे लोग हैं, और लड़के की बहन मंजू वो तो बहुत ही प्यारी। अच्छा सुन मैं चलता हूं, तू तैयार है ना? हाँ
0: सामान बांध लो, सब लाट साहब हैं, मुझसे बिना पूछे ही सब कुछ तय हो गया। कहते थे एमए कराएंगे और अब बीए भी नहीं कर पाऊंगी। लड़का इंजीनियर है, अरे तो कोई और लड़की नहीं मिली, मेरा ही करियर खराब करना था। चल बेटा चढ़ जा सूली पर, एक खत तो लिख दूं रीमा को। प्यारी रीमा, तेरे चंदन वृक्ष को सर्प घेरने वाले हैं, मतलब मेरा ब्याह हो रहा है इसी 25 को। पहले से आ जाना, नहीं तो जिंदगी भर नहीं बोलूंगी और नहीं ब्याह करूंगी। सुनी
2: विजया जी, चलिए भैया जी आ गए हैं।

0: अरे सुमी सुमी देख तेरी बारात आ गई।
1: सुमी
0: मैं भी तेरा दूल्हा देखा।
1: नहीं देना, मुझे छोड़कर मत जा।
0: क्यों?
1: मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
0: अरे घबराहट कैसा, सभी का ब्याह होता है। अरे शीशे में एक बार अपनी छवि तो देख ले, बिल्कुल अप्सरा लग रही है।
1: छोड़ मुझे दीना, शीशे में भी मुझे वही चंदन वृक्ष और उससे लिपटे हुए सांप दिखाई दे रहे। मेरा क्या होगा दीना?
0: सब बढ़िया होगा। अरे कुछ दिनों के लिए बस अपनी कविताएं भूल जा, अब तू एक नई जिंदगी में कदम रखने जा रही है ना।
1: ठीक है।

0: मैं भी चलूं?
1: अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों? शोमी के आने तक रुक जाती बेटी।
0: नहीं अंकल, रुक तो जरूर जाती, पर आज का रिजर्वेशन है और भैया स्टेशन आएंगे।
1: अच्छा बेटी ये बताओ,
0: हाँ अंकल,
1: कि शोमी का दूल्हा तुम्हें कैसा लगा?
0: अंकल ये सब ब्याह से पहले पूछा जाता है, जो बिंद गया वही मोती।
1: हाँ।
0: सुमी खुश रहे, बस यही कामना है मेरी। अच्छा चलती हूँ, सुमी की यात्रा शुभ हो और वो अपनी एक नई जिंदगी में खो जाए।
1: हाँ।

0: अभी घूंघट हटा दीजिए और पीछे टिक कर बैठिए। अरे अभी तो कई दिनों तक झुक कर बैठना होगा, है ना भैया? वैसे भाभी है बहुत खूबसूरत। भैया पापा की पसंद की दाद देनी पड़ेगी।
1: खूबसूरत है ये लड़की, वाह क्या कहना है, पारुल दीदी के पैरों की धूल भी नहीं है ये। इसे कह दो मंजू इसे आईएस बनना है, आईएस समझी?
0: जरूर बनेगी भैया, भला तुम्हारा कहना कौन टाल सकता है, है ना भाभी?
2: अरे सुनो सुनो नानी, सुनो देखो ना, अरे तार आताई आंटी दीजिए ना, जोड़ी की आंटी तार जोड़ी है, देखो जरा सा।
0: आइए भाभी अब उधर बैठिए, आइए भैया
2: तुम भी चलो।
1: नहीं मैं आंगन में जा रहा हूँ भाभी ताई जी और बुआ जी के पास।
3: मुबारक हो लल्ला जी।
2: अरे तैया दुल्हन है कि एकदम चांद का टुकड़ा।

0: हैं हमारे भी
1: खुश भैया।
2: अच्छी हो जी,
3: चाय पी लीजिए भैया, थक गई भैया।
1: आप लोग जल्दी आइए,
3: अरे आप लोग भी चाय पीजिए।
4: क्या कहा, मैं थक गया हूँ, इतनी जरूरी मीटिंग बुला रखी है मैंने, ऑफिस का सारा काम पड़ा है, ये कितनी सारी फाइलें निपटानी है और तुम कहती हो मैं थक गया हूँ। ये चाय ले जाओ और उस लड़की को पिला दो जो मेरे कमरे में बैठी है।
3: वो भाभी है भैया, अभी परसों ही तो तुम्हारे साथ उनका ब्याह हुआ है, हम लोग ही तो उन्हें विदा करा कर लाए हैं, कितनी प्यारी है भाभी।
4: भाभी अच्छा मजाक है, किसी को भी सजा कर बैठा दिया और वो तुम्हारी भाभी हो गई। ये भी भाभी है, ये भी भाभी है, कितनी सारी भाभियां हैं चारों तरफ, भाभी भाभी भाभी, वाह। लो लो चाय पियो, लो लो भाभी तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, तुम भी पी लो।
1: अरे इसकी शादी क्यों कर दी गई, हे भगवान, और बहू का क्या होगा। डॉक्टर ने कहा कुंवारी की चांद सी बहू आते ही ग्रहण लग गया, हाय क्या होगा।
5: अरे बंधी भी तो पागल के साथ।
4: क्या कहा, मैं पागल हूँ। तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम भी पागल हो, तुम सब पागल हो, पागल हो, ये पागलों की बारात है, पागलों की। मैं पागल, मेरा मन हुआ पागल, पागल मेरी प्रीत रे। अरे ये मुझे क्या पहना दिया, हार अंगूठी, ये लो ये लो ये लो, लूटो लूटो, पागल का ब्याह हुआ है, झूमो नाचो गाओ।
3: भैया भैया ये क्या कर रहे हो भैया, भाभी बुआ पकड़िए ने, मैं बाबूजी को बुलाती हूँ।
4: छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, मुझे मुझे छोड़ दो छोड़ दो, देखो देखो मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, तुम सब पागल हो, तुम सब पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं
6: हूँ,
4: मैं पागल नहीं।
3: बाबूजी बाबूजी बाबूजी बाबूजी,
6: क्या है मंजू बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो।
3: भैया को दौरा पड़ा है बाबूजी, अनशन बोल रही हैं।
6: क्या कह रही,
3: कभी हंसते हैं तो कभी रोते हैं, कपड़े फाड़ रहे हैं, चाची बुआ साबुन पकड़े हुए हैं।
6: घबरा मत बेटी, मैं अभी गाड़ी निकलवाता हूँ, उसे डॉक्टर क्या तुरंत ले जाना होगा। ऐसा कर, तू जल्दी डॉक्टर वर्मा को फोन कर दे।
3: अच्छा
6: भाभी, राहुल विकी तुम लोग इसे लेकर पीछे बैठो, मंजू तुम बेटे बहू को संभालना।
3: अच्छा बाबूजी,
6: घबरा गई होगी, हम लोग इसे लेकर अस्पताल तुरंत जा रहे हैं।
3: ठीक है बाबूजी, भाभी ताई जी संभालिए भैया को। भाभी भाभी ये क्या आप रो रही हैं, भैया ठीक हो जाएंगी, घबराने की कोई बात नहीं है भाभी, ये लीजिए पानी पी लीजिए।
1: नई जिंदगी की शुरुआत, वो भी इस ढंग से। मंजू जी क्या हो गया आपके भैया को, क्या इसकी वजह मैं हूं या फिर ऐसे दौरे इन्हें पहले भी पड़ चुके हैं। सच बताइएगा मंजू जी, आपको मेरी कसम।
3: सच ही बोलती हूँ भाभी, मेरे भैया जन्म से ऐसे नहीं हैं।
1: तो फिर
3: बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे, हर इम्तिहान में टॉप करते थे, इतनी छोटी उम्र में अच्छी नौकरी भी मिल गई, बाहर भी घूम आई हैं, लेकिन अचानक ही हमारे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई।
1: ट्रेजेडी?
3: हाँ भाभी, मेरे सबसे बड़े भैया का स्कूटर दुर्घटना में देहांत हो गया। भैया उन्हें बहुत प्यार करती थी और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके, 10 दिनों तक ना सोए और ना ही किसी से बात की, उसके बाद ही पहला अटैक पड़ा, इलाज किया गया, ठीक हो गई, मेहनत की और नौकरी भी मिल गई।
1: वहां ठीक रहते हैं?
3: हाँ भाई।

0: भी ऑफिस में बड़ी तारीफ करती हैं लोग उनकी, काम भी बहुत करती हैं,
1: और डॉक्टर्स क्या कहते हैं,
0: उम्मीद दिलाती रहती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक रहती हैं, तभी तो उनका ब्याह किया गया है। भाभी आप क्यों चिंता करती हैं? अरे अचानक ही दौरा पड़ गया होगा, 2-3 दिन में नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा अब आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ।
1: नहीं मंजू जी अभी भूख नहीं,
0: तो लेट कर सोने की कोशिश कीजिए, मैं अभी आती हूँ। शायद बाबूजी आ गए हैं।
1: कितनी सुंदर जगह ब्याह किया है अपनी लाडली बेटी का, रईस खराना, शानदार हवेली, 4-5 गाड़ियां, ढेरों नौकर चाकर और एक प्यारा सा पागल पति। अरे डैडी इससे अच्छा होता अगर आप मेरा गला घोट देती, जीते जी मुझे मारने की क्या जरूरत थी डैडी। रीमा रीमा तो सच कहती थी, इस चंदन वृक्ष से संघर्षों के सर्प लिपट गए हैं। बड़ा डर लग रहा है मुझे।
0: भाभी सो गई मेरी भाभी, कैसा निश्चल भोला चेहरा है, कुछ घंटों में ही कुंभला गया है। किस सम्मोहन में बांध दिया है मुझे इस मासूम ने, मुझे ही कुछ करना होगा। लगता है बाबूजी आ गए हैं। भगवान भैया ठीक हो गए हूं। बाबूजी क्या हाल है भैया का?
2: क्या बताऊं बेटे, बहुत ही वायलेंट हो गया था।
0: हैं?
2: हाँ, अगर सावधानी न बरती जाती तो शायद शायद वो नर्स का गला ही खोल देता।
0: बाबूजी?
2: हाँ, उसे इंजेक्शन देने जा रही थी और वो इंजेक्शन बड़ा ही कष्टदायक था बेटा। हे भगवान, ये किस पाप की सजा दे रहा है मुझे?
1: पाप क्या होगा बाबूजी?
2: क्या कह सकता हूँ मैं, फिलहाल तो इंजेक्शन देकर सुला दिया गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा।
1: नहीं।
2: राजेश बेटा।
3: जी बाबूजी।
2: कल सुबह सब जगह फोन करके डिनर कैंसिल करने की सूचना दे देना।
0: लेकिन बाबूजी भाभी के मायके वाले ट्रेन से आ रहे हैं, चल ही दिए होंगे। बाबूजी भैया की शादी करके आपने ठीक नहीं किया।
2: उस समय तो ठीक था बेटा, डॉक्टर की राय से ही तो सब कुछ हुआ था।
0: उन्होंने तो ये भी कहा था कि शादी से ठीक भी हो सकती है और बीमारी बढ़ भी सकती है, इसमें रिस्क है। हम सब ने आपसे मना भी किया था बाबूजी।
2: अरे बेटे की मोहब्बत को तुम लोग क्या समझोगे?
0: ठीक कह रही हैं आप, उसके लिए एक क्या कई सुमी की जिंदगी दांव पर लगाई जा सकती है।
2: मंजू मंजू,
0: अगर आपकी बेटी के साथ भी यही होता तो।
2: चुप हो जाओ चुप हो जाओ, चुप में आता है पक देती है।
0: सच कह रही हूँ, इसलिए आप सहन नहीं कर सकती। कितनी मासूम लड़की है, उम्र में भी मुझसे छोटी, उसकी सिसकियां, उसका रोना, उसका दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके लिए भी तो कुछ सोचिए बाबूजी।
2: अब तो बस एक ही उपाय है बेटी, शाम को उसके मायके वाले आ रहे हैं, सोचता हूं उसे उनके साथ भेज दूंगा, शायद उसका वहां मन बहल जाए। जब रितेश ठीक हो जाएगा तो उसे बुलवा लूंगा।
0: ठीक है, मैं भाभी को मायके जाने के लिए राजी कर लूंगी। अब आप भी आराम कीजिए।
2: ठीक।

0: अरे आ गए आप लोग। सुमी भी आई है। डिनर कैसा रहा? सुमी तू कुछ बोलती क्यों नहीं? रितेश कहाँ है?
1: मम्मी प्लीज, ये सब बातें एक ही साथ पूछ लेंगी। सुमी बहुत थक गई है, उसे आराम करने दीजिए।
0: अरे क्या हुआ सुमी? अरे तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? देखूं तो? हाँ, अरे तुझे तो बड़ा तेज बुखार है, जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। सुमी चल तू अंदर लेट जा बेटा। अरे जाना जल्दी से डॉक्टर को ले आ।
1: अरे हाँ बुलाता हूँ, आप उसके पास बैठिए।
2: चंदन
0: बेटा
2: छोड़ो, छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ दो।
0: सो जा बेटा। क्या हो गया मेरी सुनी बेटी?
1: हाय डॉक्टर साहब, देखिए कितनी तेज बुखार है।
0: हाँ देखिए डॉक्टर साहब कितना तेज बुखार है।
3: इत्मीनान रखिए, इत्मीनान रखिए, मैं देख लेता हूँ। अरे भाई इसको तो बुखार है। ऐसा करता हूँ मैं इसे एक इंजेक्शन फिलहाल लगा देता हूँ, और ये दवाएं आप बाजार से मंगवा लीजिएगा, चार चार घंटे पर देते रहिएगा, सुबह तक बुखार उतर जाएगा।
0: ठीक है ठीक है,
3: और घबराने की कोई बात नहीं है।
0: ठीक है जा बेटा दवाएं ले आ।
1: थैंक यू डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। सुमी सो गई है मम्मी, आप उस कमरे में चलिए, डैडी यहाँ बैठ जाएंगे। हाँ
0: ठीक है,
1: आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है, आइए।
0: हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
1: मम्मी हमें धोखा दिया गया है।
0: धोखा? कैसा धोखा?
1: हाँ मम्मी धोखा, वो बात यह है कि रितेश को पागलपन के दौरे पड़ते हैं। कई महीनों तक वो मेंटल हॉस्पिटल में भी रहा। वो तो कल शाम को ही फिर से उसे दौरा पड़ा, अब हॉस्पिटल में।
0: अच्छा,
1: उसके ड्राइवर ने हमें सब कुछ बता दिया मम्मी, नहीं तो हम तो धोखे में रहते।
0: नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे भगवान ये सब क्या हो गया? अब क्या होगा राकेश, मेरी मासूम बच्ची सुमी, ये क्या?
1: देखिए मम्मी इस तरह घबराने से कुछ काम नहीं चलेगा। मैंने और डैडी ने तय कर लिया।
0: क्या?
1: कि सुमी अब वहां नहीं जाएगी। रितेश वायलेंट हो जाता है मम्मा, तो जान पर भी हमला करता है। अब हम सुमी को नहीं खोना चाहते। मम्मी एक बार सुमी ठीक हो जाए तो उसे पढ़ाई पूरी करने के लिए भेज देंगे, रीमा उसकी केयर करेगी, और रही ससुराल वालों की बात तो उनसे हम निपट लेंगे।
0: अच्छा
1: अब ठीक है मामा, आप सुमी के पास जाइए।
0: ठीक है। आठ वर्ष बीत गए अपने आप से लड़ते हुए। वाह सुमी चौधरी वाह, बाहर मुखौटा पहन रखा है एक गंभीर प्राध्यापिका का, लेकिन अंदर अंदर छटपटाती है भोली भाली सुमी। क्या अपराध था मेरा, क्या अपराध था? भाग्य ने दुख भोगने के लिए मुझे ही क्यों चुना? अगर रीमा और डॉक्टर राजन न होते तो क्या होता मेरा? मैं तो टूट चुकी थी, और मैंने उसे बदले में क्या दिया? रीमा को दुख और डॉक्टर साहब को तड़प। आखिर आखिर वो क्यों तप रहे हैं एक टूटे हुए इंसान के लिए? मुझे मुझे हर वक्त समझाती रहती है, पर मैं क्या करूं, क्या करूं मैं?
4: अंदर आ सकता हूं?
5: ओह आप आइए आइए बैठिए ना। रीमा का कोई खत आया? कैसी है वो? और जीजा जी और बच्चे तो ठीक है ना?
4: सब ठीक है, तुम कैसी हो सुमी?
5: अच्छी हूँ,

0: सुना है आप बाहर जाने वाले हैं।
1: यहाँ रहकर भी क्या करूंगा सुमी, एक बात कहूं सुमी, जिंदगी अनिच्छा से जी जाए तो बोझ बन जाती है, हर लम्हा बोझिल हो जाता है। अभी वक्त है सुमी, ये घेरा जो तुमने अपने चारों ओर बना रखा है उसे तोड़ दो, तोड़ दो सुमी, आज आखिरी बार कह रहा हूं।
0: कैसे तोड़ दूं? ये दुनिया, ये समाज मुझे जीने देगा?
1: समाज, समाज, फिर वही समाज। क्या दिया है समाज ने तुम्हें? घुटन, तनाव और दुख, तिल तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया है तुम्हें, और लोग भी जल रहे हैं, लेकिन तुम्हें इससे क्या? हार गए हैं हम भी, क्या मिलेगा शिलाओं से टकराने से? चलता हूं, गुड बाय सुमी।
0: राजन,
1: सुमी
0: रुक जाओ प्लीज, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बहुत थक गई हूं
1: सुमी।
0: और राजन,
1: ओ सुमी, मैं जीत गया सुमी, मैं जीत गया, शायद चंदन से सांप हट गए हैं
0: और बिखर गई है मादक गंध।

0: अभी आप सुन रहे थे नाटक चंदन वृक्ष। इसकी लेखिका थी उषा सक्सेना, निर्देशिका रमा अरुण त्रिवेदी। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती बेचारा।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की, एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।
2: जहां

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवां भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। ये है रीकैप एपिसोड वन।
1: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बंबई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया। यहाँ कोलीवाड़ा में जाम थे
2: जी,
1: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
2: साइन में,
1: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T-157
2: जी।
1: तो टी मतलब होता है टट्टी,
2: अरे
1: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
2: ओ गॉड।
1: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई होली आई कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा करता था
2: जी
1: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाय रमेश तलवार, म्यूजिक बाय कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
2: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है
1: ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड में लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं, मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सिलेक्ट हो गया और मद्रास एवीएम में जो है उसकी शूटिंग थी।
0: एपिसोड टू में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
1: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तेफाक एक फिल्म बनेगी, एक महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
2: बिल्कुल।
1: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है, मुझे असिस्टेंट रख लेंगे, एक महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफी
2: आगे
1: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बी आर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो, मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी चार असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बी आर चोपड़ा ने कहा पांचवा असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखिएगा सब
2: जी।
1: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ,
2: Yes.
1: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म अच्छी फिल्म देखी हुई है पांच आने में, फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुरला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुरला एक आने का टिकट, वहां जाता पांच आने की पिक्चर, एक आने का खाना और एक आना वापस आना, ठन्नी में
2: काम बन जाता था,
1: काम बन जाता।
2: कौन कौन सी फिल्में देखी
1: सब, कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है, बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें, तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जगह पे।

0: के ऊपर में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती पांच बार से कर कोने में बैठा सब आगे चले। तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने के भाई एक प्रोजेक्ट है, करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए, और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं। आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिंपल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी।
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में,
1: हाँ
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
1: हाँ हाँ,
0: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई,
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना,
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद करते देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतना है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े

0: रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत के चौथे एपिसोड में ये हिस्सा बड़ा ही दिलचस्प था।
1: तो मुझे ऋषि कपूर का एक दोस्त है, उसने आइडिया सुनाया। उसमें ऋषि कपूर है, नीतू सिंह वाला रोल है, और बाप और माँ है वो है, उसमें राखी का रोल नहीं था। तो मैंने उनके दोस्त से कहा कि भाई तेरी स्टोरी में लेता हूँ, लेकिन इसमें चेंजेस होंगे। नया न्यू कमर था राइटर,
0: जी जी जी,
1: उन्हीं का नाम है राइटर, एज राइटर स्टोरी राइटर उनका नाम ही है। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ जो भी है। तो मैंने चिंटू से कहा, मैंने कहा भैया ये ऐसा ऐसा है, सागर सरदी साहब से कहें करने के लिए। बोला बहुत अच्छा, अगर सागर सरदी कर ले। तो सागर साहब एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करते रहे 3-4 साल, वो जो एक्सपीरियंसेस उनको थे वो उन्होंने इसमें डाले। और इलिस्टेड वीकली में किसी का फोटो आया था, एक कोई सीनियर थी एडवर्टाइजिंग में, उसका फेस बहुत आता था, उनका फेस आया, उन्होंने वो मुझे दिखाया, ऐसी कोई औरत। और फिर करते करते ये आइडिया आ गया कि 40 साल की वो और 20 साल का

0: के साथ है, जीनत अमान के साथ है
1: जी। सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लूँ, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई, और मैंने वो सुनी और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर का
0: जी जी।
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंटरम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता
0: जी जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ
0: जी,
1: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब मैं काम करता हूँ, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उसने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का, और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर तेरा नाम मेरा नाम न्यू कॉमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको शूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? पहले जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहे हैं, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लेती है, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटीज में। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे, मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते।

0: होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे अपने ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को भी बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटे कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलिंग हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आए, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
1: अरे वाह।
0: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा हुआ था, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। मुझे आप ही करिए कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे आप, करिए आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले तो मेरे रेसलिंग करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
1: वाह वाह वाह।
0: उन्होंने कहा रोल मेन जय जी का लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जजी थ्रू आउट प्ले में और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं तीन चार, तो सब ने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुना।

आपको मुमा का दाम मिल, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तो तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? प्ले करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना, और वो प्ले अच्छा है, आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गुरड़िया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट पर में बाद में सुनाऊंगा, क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर और हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद। तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे, तो उनका फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने कहा शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए जावेद साहब से कहिए लिखे। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी, आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और, तो आप कंवलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट आए, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेस और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिलके, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है श्याम का, उसमें कैरेक्टर का नाम श्याम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सचदेव उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नज़दीक नज़दीक ही है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी कर ली, वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला, और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया, रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है, और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
0: वाह वाह,
1: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है, और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कंवलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
0: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
1: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमला जी की बेटी वो आई, परीक्षित सानी के संग आई थी, तो उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीज़ें।

0: लेके एक शिप बना के आपको सुना दूंगा। और प्रीति चांदनी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज चांदनी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अभी अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करने, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी कभार करता।
1: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है वो।
0: हाँ, बहुत अच्छा। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

बनाई है, फिल्म से लेके बनाई है, और उसका हमने एक वर्षन स्टेज पे क्या हो सकता है उस तरह करके जमा लिया अपना, और चलता है। लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हिना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था, और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज, जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आजमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है, तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सदीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो।

0: पत्थर लिखा हुआ है, और ये उसके सारे बीज जो है काबुलीवाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबुलीवाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है, और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल, और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा हूं। तो वो पोर्शन हमने काबुलीवाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: थी रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवां भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: धारा में आज
2: उजाले।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए, ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो, या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए, और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

हमारे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आइए सुने छाया गीत। सुनने वालों को शेफाली कपूर का नमस्कार। कहते हैं जिसे मोहब्बत हो गई उसे अपने महबूब के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। इश्क में डूबे इंसान को अपने महबूब की हर चीज दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, नाजुकी, उसका हुस्न, उसकी नजरें। जिसने तेरी नजर को देख लिया उसको दुनिया नजर नहीं आती। सच, उन्हें देखकर ये लगता है जैसे हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई हो।
1: कहां से लाई

अब तक मेरी यादों से मिटाए नहीं मिटता भीगी हुई एक शाम का मंजर, तेरी आंखें। आप इश्क में हैं और दिल में जख्म ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तमाम दर्द और जख्म के बाद भी दिल लगाना भला कौन छोड़ पाता है। जख्म झेले, दाग भी खाए बहुत, दिल लग

बताकर हम तो पछताए भी बहुत। वो तमाम पन्ने जिन पर लिखी हैं तेरी मेरी कहानी, सच कहूं इश्क हो जाएगा मेरी दास्ताने इश्क से। रात भर जागा करोगे इस कहानी के लिए।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। उनके आने के बाद भी देर तलक उनका इंतजार रहा। कभी चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों में खो जाते थे हम, अब अकेले रातों में तेरी यादों में बिखर जाते हैं हम। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूँ, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिज्र की शाम, उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिज्र की शाम, न पूछ कैसे गुजरती है तेरे हिज्र की शाम।

न जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में सितारे चमकते हैं शाम से पहले। दिल की चाहत होती है तुम बैठो कुछ देर हमारे सामने यकीन के लिए। दवा जरूरी तो नहीं हर वक्त सुकून के लिए। तुम्हें पता है जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। ये शाम की तन्हाइयां तेरी यादों के काफिले, एक कसक, एक टीस, एक सूनापन, एक अधूरी सी आहट। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही। मेरी हर शाम तेरी याद की हमराज रही।

जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। एक ही मिट्टी से हम दोनों बने हैं, तुझ में और मुझ में मगर फासला यूं कितना है। पूछते हो तो सुनो, है और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है। वो मुझको टूट के चाहेगा, छोड़ जाएगा, मुझे खबर थी उसे ये हुनर भी आता है। कब लौटा है बहता पानी, बिछड़ा साजन, रूठा दोस्त, हमने तो उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामा था। वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं जाना, वक्त के बदलने से दिल कहाँ बदलते हैं जाना, आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है।

अक्सर पूछते हैं लोग, किसके लिए लिखते हो? अक्सर कहता है दिल, काश कोई होता। साथियों, इन्हीं अफसानों के साथ पूरा होता है आज के छाया गीत का सफर। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शेफाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं निमाड़ी लोकगीत।
1: और दादाजी का दर्शन से भाई हो, दादाजी का दर्शन से भाई हो आसान डगरिया। चलो रे भाई खंड।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे निमाड़ी लोकगीत। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 6 बजने को है, लीजिए प्रस्तुत है युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका वाणे और मैं लेकर हाजिर हूं आज का फरमाइशी फिल्मी गीतों से सजा क्रम हेलो फ्रेंड्स, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के प्यारे प्यारे नगमे। तो अब हम अपने क्रम पर बढ़े उससे पहले आइए जान लेते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के दो प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? और आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए युववाणी।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का क्रम हेलो फ्रेंड्स।
7: हेलो फ्रेंड्स,
0: बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से। हेलो फ्रेंड्स में स्वागत है आपका, नाम बताइए अपना।
8: नमस्कार मैडम, मैं बजरंग चौक गांधवा से संतोष पटेल तिरोली बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी संतोष जी, क्या करते हैं आप?
8: जी खेतीबाड़ी काम करता हूँ मैडम, अभी खेतीबाड़ी काम चल रहा है, बोने की तैयारी चल रही है।
0: कौन सी फसल बोई जानी है अब?
8: फसल तो अभी मक्का बोएंगे और सोयाबीन की फसल एक साल लेना है।
0: जी तो तैयारियाँ कैसी चल रही है आपकी?
8: जी तैयारी तो जोरदार चल रही है, लपक के चल रही है, हाल बखर गिर रहा है। अभी बखर पे से आया हूँ मैं और मैंने कहा हेलो फ्रेंड्स में फोन लगाना है।
0: अरे वाह क्या बात है।
8: जी मैडम, रेडियो तो बचपन का साथी है, रेडियो से तो अपना संसार चलता है। आकाशवाणी के आपके मित्र ये कार्यक्रम फोन करेगी सुने हेलो फ्रेंड्स, और जो निमाड़ी भजन आते है, जो सवेरे का कार्यक्रम आता है आस्था की स्वर।
0: जी
8: सभी कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, रेडियो तो 24 घंटे चलता रहता है हमारे घर।
0: जी तो आप अपना रेडियो सेट अपने साथ ही रखते हैं खेत पर भी?
8: जी FM तो साथ में रखता हूँ, बखर पे भी जाता हूँ तो साथ में ले जाता हूँ खेत में।
0: अरे वाह क्या बात है।
8: जी रेडियो तो TV है पर TV में मजा नहीं आता है, रेडियो अच्छा मजा आता है सुनने में।
0: जी
8: समाचार मिल जाते हैं, गाने सुनने में आते हैं।
0: हाँ जी
8: और आपकी बात करने में तो बहुत मजा आता है और बड़ा आनंद आता है। आज सुनवा दीजिए अर्पण पिक्चर का गाना सुबह कैसे है नादान घुंघरू पायल के।
0: आप इस गीत की 2 पंक्तियाँ अगर हमारे श्रोताओं को अपनी आवाज में सुना देंगे।
8: जी
9: सुबह कैसे है नादान घुंघरू

0: हेलो फ्रेंड्स, में स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना।
1: जी, मैं मथुरा से शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी दीदी से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी, आप कैसे हैं?
0: हम तो बहुत बढ़िया है, आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनना शौक है, दीवानगी है, जुनून है। आप लोगों से वार्तालाप करके बेहद खुशी प्रसन्नता अनुभव करता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्या करते हैं आप?
1: मैं घर पर रहता हूँ, बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक, और थोड़ी दृष्टिहीनता का शिकार हूँ, इसलिए मैं टीवी वगैरह नहीं देखता हूँ। आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ, आकाशवाणी की कार्यक्रम सुनता हूँ। सूचना शिक्षा मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम जो आप लोग प्रसारित करते हैं वह हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लुभाते हैं।
0: जी, तो रेडियो आपका साथी है।
1: जी, मेरा रेडियो एक अच्छा और पक्का साथी है।
0: कब से जुड़े हैं आप रेडियो से?
1: 1995 से मैं आकाशवाणी के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनता हूँ। पहले मीडियम वेव पे और विविध भारती सुनता था, स्टार वेव पर।
0: जी,
1: मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कहीं भी कहीं के प्रोग्राम बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से सुनने को प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी, तो आप जो आकाशवाणी का मोबाइल ऐप है उसका उपयोग भी करते हैं?
1: जी, मोबाइल एप्लीकेशन में बच्चों लोग डाउनलोड कर दिए हैं तो हम उनके माध्यम से सुन लेते हैं।
0: क्या बात है, बताइए आप आज के हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है चांदनी, किसके बोल है तेरे मेरे होठों पर मीठे मीठे गीत मितवा।
0: हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स में स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना।
1: मैं सोहन पटेल,
0: सोहन जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: मैं खंडवा मध्य प्रदेश से।
0: जी, क्या करते हैं सोहन जी आप?
1: मैं किराना दुकान है मेरी मैडम।
0: गर्मियाँ बहुत तेज हो गई है तो।
1: अरे मैडम, का टेम्परेचर तो बहुत बढ़ चुका है।
0: जी, तो आप अपनी दुकान का समय क्या रखते हैं? दोपहर में बंद रखते हैं या बिल्कुल आपकी दुकान चलती रहती है दिन भर?
1: दुकान तो हम समझ के चलो कि 6 से 11 बजे तक चलती रहती है।
0: अच्छा, आज के हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप?
1: हम सुनना चाहते हैं सात रंग के सपनों में खो गई सजना।
0: हम आपको सुना रहे हैं आपकी पसंद पर गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, में आपका स्वागत है। नाम बताइए अपना।
1: रमा सावले
0: जी, रमा जी, क्या करती है रमा जी आप?
1: मैं डॉक्टर सिविल विश्वविद्यालय में लाइब्रेरियन के पद पर कार्यरत।
0: जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं छेगांव माखन से बात कर रही हूँ।
0: आप आकाशवाणी के कार्यक्रम नियमित रूप से सुनती है?
1: हाँ मैम।
0: और युववाणी कार्यक्रम कैसा लगता है आप?
1: बहुत अच्छा आता है मैम।
0: जी, बताइए रमा जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज हमारे कार्यक्रम में?
1: आप हिस्ट्री 2 का कोई भी सुना दीजिए।
0: ठीक है रमा जी, हम आपको सुनवा रहे हैं आपके पसंद पर ये गीत।

0: हेलो फ्रेंड्स, में स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना।
1: धर्मेंद्र सेन बोल रहे हैं खंगवाड़ा से। हमारी
0: धर्मेंद्र जी, क्या करते हैं आप?
1: दुकान है सैलून,
0: सैलून है आपका?
1: हमें दीदी गाना सुनना है। गाना
0: जी, सुनवाएंगे आपको आपकी पसंद का गीत।
1: की बोले मेरे आंगन में क्या काम है।

0: इसी गीत के साथ आज का हमारा हेलो फ्रेंड्स यही संपन्न होता है। इस क्रम के लिए हमें तकनीकी सहयोग दिया रुपेश कुमार शिवपुरिया और मनोज कुमार गुप्ता ने, और इसे प्रस्तुत किया आपकी दोस्त प्रियंका वाणे ने।
1: हेलो फ्रेंड्स,
0: आइए दोस्तों अब आपको बता देते हैं हमारे आज के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? इसका उत्तर है यांग शुआंग जी को। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न था, मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है तमिलनाडु। अब ये तो हुए आज के प्रश्नों के उत्तर। अब कार्यक्रम संपन्न करने की दीजिए अनुमति आपकी दोस्त प्रियंका वाणी को। नमस्कार।

अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का खंडवा केंद्र है। शाम के 6:30 होने को है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर है। यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया। श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे। फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय सीबीएसई के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ

मुकाबले में टॉस जीत कर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
2: दिल से दिल तक पहुंचती आवाज, आकाशवाणी खंडवा की।

0: तू है तो
1: हम हो चुके आपकी। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए निमाड़ की सुरीली धड़कन, आकाशवाणी खंडवा।
2: अरे क्या हुआ, इतने उदास क्यों बैठे हो?
3: सोच रहा हूँ अपनी दुकान का विज्ञापन कब दूँ और कहाँ दूँ।
2: अरे इसमें उदास होने की क्या बात है?
3: क्यों?
2: आप अपनी दुकान का विज्ञापन कर सकते हैं आकाशवाणी के माध्यम से।
3: वो कैसे?
2: आकाशवाणी के खंडवा केंद्र पर जाकर सोमवार से शुक्रवार कार्यालयीन समय के बीच आप अपनी दुकान का विज्ञापन दे सकते हैं।
3: अच्छा, तो इसका फायदा क्या होगा?
2: इसका फायदा ये होगा कि आकाशवाणी खंडवा का प्रसारण न सिर्फ हमारे क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और पूरी दुनिया में भी सुना जाता है। तो आपकी दुकान तो हो गई ना मशहूर,
3: वर्ल्ड फेमस। बिल्कुल, तो मैं आज ही जाता हूँ आकाशवाणी खंडवा।
2: आप कब आ रहे हैं
3: आकाशवाणी खंडवा पर?

0: बातों से बातों का सिलसिला,
1: आदत से इबादत का सिलसिला,
0: हमारी और आपकी मोहब्बत का सिलसिला। मेरे इश्क पे हक
1: हुआ तेरा। यूं ही चलता रहे कयामत तक, तो सुनते रहिए निमार की सुरीली धड़कन आकाशवाणी।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा।
2: प्रादेशिक समाचार। तीनों कॉलेज में
3: डोंट वरी
2: फीस तो देखो।
4: क्या हाल है, क्या हुआ?
3: फीस की टेंशन।
4: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
5: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल।
4: वो कहा है?
5: मिठाई।
6: आरबीआई कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
9: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
10: दिमाग चार्ज कर अपना।
11: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
10: देखा
9: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
11: अब क्या करोगे?
9: फ्री वाईफाई है ना।
10: बुद्धू सुधर जा।
11: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
9: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
11: आरबीआई कहता है
7: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
12: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की तीशा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमरीका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
13: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
14: These would be the principles with which we would approach that region.

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर

0: घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय ट्विशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। ट्विशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन प्रेस्टीज श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी कोकता बायपास रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन RGPM सनखेड़ी दानिशकुंज कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है। लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल इंदौर उज्जैन ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधोलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजाति ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी,
1: हाँ?
0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
0: दीका,
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
3: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
4: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
5: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: आई नो ना।
5: RBI कहता है,
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: दादी कौन सा प्लांट है?
8: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
9: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
7: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
9: क्यों?
7: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
9: ओह

0: आप सुनी रहा नी माड की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा।
1: FM बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के खंडवा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

कार्यक्रम सुनने वाला सभी भाई बहनों को आपकी बहन निरुपमा मिश्रा की राम राम। भाई बहनों होनी सूरज की तेज किरण, झुलसावने वाली गर्म हवा और पसीना से तर बतर करी देने वाली उमस, कुछ इना तरह से पहचान बनी गई हमारा निमाड़ क्षेत्र की गर्मी की। न पिछला कुछ साल न से ग्लोबल वार्मिंग अरु जलवायु परिवर्तन का कारण गर्मी को मिजाज अरु ज़्यादा बिगड़ी गोज। अब न केवल मार्च अप्रैल से रिकॉर्ड तोड़ गर्मी शुरू हुई जाज, बल्कि हीट वेव यानी लू की अवधि भी साल दर साल बढ़ती जा रही। भाई बहनोणी, गर्मी केवल हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कज प्रभावित नहीं करज, बल्कि ये हमारी कार्य क्षमता और मानसिक शांति का भी प्रभावित करज। अधिक तापमान का कारण हमारा शरीर को प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम ठप पड़ी जाए, जेका कारण डिहाइड्रेशन, रीहीट स्ट्रोक, घमोरी और ज़्यादा थकान जैसी स्वास्थ्य समस्या को सामनो हमको करना पड़ज। एक अलावा अधिक गर्मी से पाचन तंत्र कमजोर होने से और इना मौसम में भोजन जल्दी दूषित होने से डायरिया और उल्टी की शिकायत भी देखने में आवज। भाई बहनोणी, भीषण गर्मी से बचाव की रणनीति का हम पांच मुख्य भाग में बांटी सकान। पहलो छे आहार और जल योजन, दूसरो छे पहनावो और व्यक्तिगत देखभाल, न तीसरो छे घर और कार्यस्थल में का ठंडो रखणो, न चौथो छे दैनिक दिनचर्या और यात्रा, न पांचवो छे प्राथमिक चिकित्सा। भाई बहनोणी, आहार और जल योजन का अंतर्गत हमको गर्मी में अपना शरीर का अंदर से ठंडो रखने का लेन पानी को स्तर बढ़ाए रखनू पड़ेगा। एका लेन प्यास लगने को इंतजार नहीं करा, हर आधा घंटा में कुछ पानी की मात्रा लेते रहा या गर्मी का मौसम का हिसाब से ठंडो पेय पदार्थ या शरबत भी आप ली सको। एक युवा व्यक्ति का गर्मी का दिन में कम से कम 3.5 लीटर से 4 लीटर पानी या तरल पदार्थों को सेवन करना चाहिए। भाई बहनोणी, अक्सर देखने में आवज कि गर्मी में तेज प्यास लगना या बाहर धूप से आवना के बाद व्यक्ति फ्रिज को ठंडो पानी से अपनी प्यास बुझावज, तो असो नहीं करा, क्योंकि असो करने से ये गला का नुकसान पहुँचावज और शरीर का तापमान का अचानक से असंतुलित करी देज। एक बजाय आप मिट्टी का घड़ा को प्राकृतिक रूप से ठंडो पानी पीवा, इना पानी को पीएच मान क्षारीय होज, जो कि पाचन का लेन भी बहुत अच्छो रज। भाई बहनोणी, गर्मी में हमारा शरीर से पसीनो ज़्यादा आवज, न पसीना का रूप में पानी अरु जरूरी लवण भी शरीर से निकली जाज, जेका कारण पेशाब में जलन, सूखो मुँह, चक्कर आवणु और कमजोरी शामिल छे। न लोग शरीर में पानी की पूर्ति और ठंडक का लेन कार्बोनेट कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट बंद जूस लेज, जेका में ज़्यादा मात्रा में शक्कर और प्रिजर्वेटिव्स होज, जो कि शरीर का ठंडो रखना का बजाय और ज़्यादा

0: रिहाइड्रेट करो। तो यदि इनका सेवन का बजाय आप नींबू पानी, छाछ, आम पन्नो, नारियल पानी, सत्तू को शरबत, बेल को शरबत पियोगा तो ये शरीर का प्राकृतिक रूप से ठंडो रखेगा और इनका सेवन से बाहर लू लगनों को खतरों भी कम हो जाएगा। भाई बहनोनी, इन्हीं बढ़ती गर्मी से हमारा शरीर को बचाव या सुरक्षा किना प्रकार से हम करी सकान, हमारो आहार कसो होनो चाहिए, बाहर निकलने का समय काई काई सावधानी रखनो चाहिए और गर्मी से शारीरिक समस्या होने पर हमारी प्राथमिक चिकित्सा काई होनो चाहिए, इन सभी के बारे में हम आगे बात करांगा। अभी ले ले बानी बस थोड़ो सो विराम।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: भाई बहनों ने अपनी बातचीत का आगे बढ़ाने से पहले पूछ ले मांज कृषि आधारित आज को प्रश्न न। आज को हमारा प्रश्न छे, भारत में भैंसी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी छे। प्रश्न एक बार फिर से सुनी लो, भारत में भैंसी की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी छे। इना प्रश्न को उत्तर बतावांगा हमेशा की तरह कार्यक्रम का आखिर में, तब तक बने रहो हमारा साथ। भाई बहनोनी, हम बात करी रहा था बढ़ता तापमान से शरीर पर होने वाला प्रभाव और उनका से उपाय के बारे में। भाई बहनोनी, इना बढ़ता तापमान में आहार की बात करा तो इना समय भारी तेलीय मसालेदार और बासी भोजन खाने से परहेज रखना चाहिए। साथ ही भाई बहनोनी, खुली और बहुत देर तक कटेल रखी खाने की वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक कटेल और खुली वस्तु न हानिकारक बैक्टीरिया बहुत जल्दी से फैली जाए, जिनका खाने से उल्टी दस्त और डायरिया जैसी समस्या होने को खतरो रज। भाई बहनोनी, ने गर्मी का समय में पानी से भरपूर फल और सब्जी न को समावेश करा, जैसो कि तरबूज, खरबूजो, खीरो, ककड़ी, संतरा और अंगूर, टमाटर, लौकी, तोरई और कद्दू। ये हरी सब्जी न छे न इनका में पानी की मात्रा ज़्यादा रहने से पचन में भी अच्छी रज। भाई बहनोनी, गर्मी नम प्याज को सेवन हमारा शरीर का लेने एक औषधि को कार्य करज। एक आम क्वेरसेटिन नामक तत्व होज जो कि हमका लू से बचावज। दोपहर का भोजन का साथ भोजन में कच्चा प्याज को सेवन जरूर करा न। दोपहर में यदि हम घर से बाहर जा रहा होए तो एक छोटो सो प्याज अपना साथ जरूर रखा। प्याज का साथ रखने से भी लू लगनों को खतरों कम हो जाए। भाई बहनोनी, गर्मी में पुदीना की चटनी या रायतो भी शरीर का ठंडक देज, तो इनका भी अपना भोजन में जरूर शामिल करा। भाई बहनोनी, इन्हें गर्मी में ज़्यादा चाय और कॉफ़ी को सेवन नहीं करा, इनका में निकोटीन और कैफीन हो जो कि शरीर से पसीना और मूत्र का रूप में पानी का तेजी से बाहर निकालज। बात करा गर्मी में पहरावा की तो भाई बहनोनी, हम सब ये जाना कि गर्मी का मौसम में हल्का सूती कपड़ा शरीर का ठंडक देज। हल्का रंग का ढीला ढाला सूती कपड़ा पहनने से शरीर में हवा को संचार अच्छो होज, जैका से घमोरी होने की संभावना भी कम हुई जाए। भाई बहनोनी, इना समय बहुत जरूरी काम होने पर घर से बाहर जावा न, एकालेन भी सुबह या शाम का समय को चुनाव करा न। यदि दोपहर का समय जानू जरूरी जो है तो शरीर का अच्छी तरह से ढाकी कर निकला न, चेहरा और सिर का सूती स्कार्फ या गमछा से ढाकी का जावा और आँख न का लेन धूप का चश्मा को उपयोग करा। भाई बहनोनी, घर का तापमान का ठंड

रखना का लेन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खिड़की दरवाजा नक बंद रखा या खिड़की और दरवाजा पर खस या टाट का पर्दा का गीलो करी कर लगावा ताकि कमरों प्राकृतिक रूप से ठंडो रहे और बिजली की खपत भी कम होए। भाई बहनोनी दोपहर 12 से 3 बजे तक सूर्य की तेज किरण या पराबैंगनी किरण निकलज तो विशेष रूप से इन समय में बाहर निकलने से बचा। मोटरसाइकिल चलावते समय हाथ नम सूती दस्ताना और हेलमेट का अंदर एक गीलो सूती रुमाल सिर पर रखा। भाई बहनोनी इतनी सावधानी रखने पर भी यदि लू लगी जाए या आपका सामने कोई व्यक्ति धूप का कारण बेहोश हो जाए तो बिना समय गवाए ओका सबसे पहले किना छायादार ठंडा स्थान पर लावा, फिर ओका कपड़ा ढीला करी कर ओका शरीर से अतिरिक्त कपड़ा हटाई देवा, ओका कूलर में रखा या कूलर नहीं होना पर हाथ से हवा दई कर ओका शरीर का सुखाड़ा, फिर ओका सिर गर्दन बगल और जांग का पास गीली पट्टी या बर्फ की थैली रखा। शरीर का इन अंग नसी खून की मुख्य नली न गुजरज जे का कारण शरीर को तापमान जल्दी कम हुई सका तो पूरा शरीर पर ठंडो पानी को छिड़काव करा या उख गीली चादर में लपेटी देवा। भाई बहनोनी इना प्राथमिक उपाय का बाद गर्मी से पीड़ित व्यक्ति का राहत मिलने का बाद ओका नज़दीकी अस्पताल में जाए का उपचार करा। तो भाई बहनोनी गर्मी से डरने की बजाय यदि हम सही जीवन शैली अपने का एक दुष्प्रभाव से बची सकान तो इना गर्मी मैं खुद का सुरक्षित रखा स्वस्थ रहा और प्रकृति का इना रूप को भी सहजता का साथ सामना करा। भाई बहनोनी अपनी इनी बातचीत का बाद आनंद लीलेवान इना निमाड़ी लोकगीत को जेखा गायज हेमलता उपाध्याय और साथी ननो।

0: भाई बहन होनी, अभी हमने आनंद लियो इनानी माड़ी लोकगीत को, जेखा गायत हो हेमलता उपाध्याय अरु साथी ने न भाई बहन होनी। अब चलांज कृषि संबंधित जानकारी की ओर, न सुना जी भेटवार्ता, विषय छे गर्मी में फूलन की खेती। इना विषय पर जानकारी दई रही कुमारी शिवानी दशोरे। किसान भाइयों राम राम। आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं शिवानी दशोरे जी। आज हम इनसे फूलों की खेती पर बातचीत करेंगे। तो शिवानी दशोरे जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार किसान भाइयों।
0: शिवानी दशोरे जी, जैसा कि हमारा विषय है फूलों की खेती, तो हमारा जो निमाड़ क्षेत्र है वो अभी प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है, तो इस समय हमारे किसान भाई फूलों की खेती क्यों करें, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: गर्मी के मौसम में आपने देखा ही होगा खेत खाली रहता है, तो ऐसे टाइम पे फूलों की खेती जो रहती है वो बहुत लाभदायक रहती है। और इसी समय सारी शादियां चलती रहती है
0: जी,
1: जहाँ पे सजावट के लिए फूलों का यूज किया जाता है
0: जी,
1: तो वहाँ पर हम फूलों से अधिक आय प्राप्त कर सकते, जो किसानों की आर्थिक व्यवस्था के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ फूलों की खेती जो रहती है वो करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है
0: जी,
1: और ये कम समय में ही हमें ज्यादा उत्पादन प्राप्त करके दे देती है
0: जी। तो ये तो आपने बताई कि फूलों की खेती हमारे किसान भाई क्यों करें, उनके आर्थिक मुनाफे के कारण वो इसको प्रायोगिक तौर पर कर सकते हैं। शिवानी जी, जैसे हमारे किसान भाई इस खेती को यदि करना चाहते हैं तो उनको किस प्रकार की मिट्टी इस खेती के लिए अच्छी रहती है और कैसा तापमान होना चाहिए?
1: देखिए, तापमान का बोले तो गर्मी में सबसे अच्छा तापमान रहता है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस
0: जी।
1: और मृदा की बात करें तो फर्टाइल सॉइल, जिस कह सकते हैं उर्वरक वाली मिट्टी, और जिसका पीएच मान होना चाहिए 5 से 7 के बीच में, जो फसलों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है
0: जी।
1: और मृदा को देखें तो बलुई दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी अच्छी रहती है, जिससे फसलों में हवा और पानी का संचार अच्छे से हो सकता है
0: जी। तो जैसे आपने बताई कि इसमें सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है, तो क्या ऐसे

0: किसान भाई जो जिनके पास पानी का कम साधन है या जैसे उनके पास पानी की उपलब्धता कम है, क्या वे भी इस खेती को कर सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जो सूखा सहन कर सकती है,
0: जी
1: जिनको कम पानी की ज़रूरत रहती है, उन फसलों को लगा के भी हम अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।
0: जी ये तो बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। शिवानी दशोरे जी, निमाड़ क्षेत्र के हिसाब से किसान भाइयों को किन किन फूलों की खेती करना चाहिए?
1: देखिए निमाड़ क्षेत्र के हिसाब से सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो गेंदे का पौधा है।
0: जी
1: उसके अलावा हम रजनीगंधा लगा सकते हैं, फिर सूरजमुखी लगा सकते हैं,
0: जी
1: जीनिया है, बाल्सम है, गेलार्डिया है, ये
0: जी
1: सारे फ्लावर्स निमाड़ क्षेत्र में आप आसानी से लगा सकते हैं।
0: जी तो जो भी आपने ये फूलों के नाम बताए हैं, तो ये फूल जो हैं वो कितने दिन में उत्पादन देना शुरू कर देते हैं?
1: कुछ पौधे ऐसे हैं जो आपको 4 या 5 मंथ में ही फ्लावर देना शुरू कर देंगे, और कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा और जल्दी दे देंगे, 1 या 2 महीने में। जैसे अगर गेंदा हम लगाते हैं
0: जी
1: तो वो 90 दिन में आपको फूल देना शुरू कर देगा,
0: जी
1: और वहीं अगर अपन रजनीगंधा लगाते हैं तो वो 5 से 6 महीने में आपको फूल देना शुरू
0: जी
1: करेगा, और रजनीगंधा जो रहता है उसको एज अ कट फ्लावर भी यूज कर सकते
0: जी
1: हैं।
0: तो जैसे आपने रजनीगंधा फूल की बात की जो 4 से 5 महीने बाद उत्पादन देना शुरू करता है, तो इस बीच तो हमारा जो वर्षा का समय शुरू हो जाता है, तो फिर उससे इसको कोई परेशानी तो नहीं होती है?
1: नहीं, इसको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती है, ये बहुवर्षीय पौधा है, ये आप लगाओगे तो 3-4 साल तक लगत फ्लावर देता है,
0: जी मतलब एक बार लगाने के बाद किसान भाई कई महीनों तक
1: रख
0: उत्पादन ले
1: सकते
0: सकते
1: हैं।
0: हैं। जी शिवानी दशोरे जी, अब हम बात करते हैं फूलों की खेती के लिए खेत की तैयारी की। तो फूलों की खेती के लिए किस प्रकार से खेत तैयार किया जाना चाहिए?
1: सबसे पहले जो पुरानी फसल है उसके सारे अवशेष को हटा देना चाहिए,
0: जी
1: उसके बाद 2 से 3 बार अच्छा गहरी जुताई करनी चाहिए,
0: जी
1: और जो भी पत्थर या कंकड़ बड़े बड़े हो वो सब हटा देना चाहिए।
0: जी
1: फिर अगर पौधा जैसे गड्ढे वाला है तो
0: जी
1: उसके लिए 1x1x1 का गड्ढा, और अगर स्पेसिंग वाला है तो उसके लिए 45x45 का सेंटीमीटर का रो से रो और प्लांट से प्लांट की दूरी रखकर खेत तैयार करना चाहिए।
0: जी मतलब इसमें गड्ढे तैयार किए जाते हैं।
1: हाँ
0: जी तो ऐसे कौन कौन से फूल हैं जो नाली पद्धति द्वारा तैयार होते हैं? ये तो आपने गड्ढे वाली विधि
1: हाँ
0: बताई, नाली पद्धति वाले भी कुछ फूल रहते
1: हाँ
0: होंगे?
1: जैसे गेंदा अपना वो नाली पद्धति का है, बाल्सम वो भी नाली पद्धति का है,
0: जी
1: जीनिया, ये गैलार्डिया, ये सारे पौधे नाली पद्धति में लगाए जाते हैं।
0: जी तो ये तो हो गई हमारी खेत की तैयारी की बात। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब हम ये फूलों की खेती करते हैं तो किस विधि द्वारा इनको तैयार किया जाता है? क्या इनके पौध लगाई जाती है या फिर इनकी नर्सरी तैयार पहले से की जाती है और फिर उन पौधों को तैयार खेत में लगाया जाता है, या डायरेक्ट खेत में इनको सीधे तौर पर बीज के रूप में बोया जाता है?
1: कुछ फसलें जो रहती है फूलों की उनको आप बीज के द्वारा लगाते हैं और नर्सरी तैयार करते हैं। जैसे गेंदा, इसकी नर्सरी लगती है 1 महीना पहले,
0: जी
1: बालसम इसकी भी नर्सरी 1 महीना पहले लगती है,
0: जी
1: और उसके बाद कुछ रहते हैं जिनको कंद से तैयार करते हैं, जिसमें आता है ट्यूबरोस या
0: जी
1: रजनीगंधा, ये
0: जी
1: आता है उसके अपन बल्ब लेते हैं जो कि रहते हैं 6 से 7 सेंटीमीटर के
0: जी
1: अच्छे बल्ब। फिर है गेलार्डिया, बालसम, ये पौधे जो बीज के द्वारा तैयार करते
0: जी
1: हैं।
0: तो आपने जो कंद वाले फूलों की बात की, तो ये कंद हम कहाँ से प्राप्त कर सकते
1: ये
0: हैं?
1: कंद आप कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, या फिर वो जगह जहाँ पे इनकी खेती की जा रही है
0: जी
1: वहां से भी आप ले सकते हैं। ये पौधा हर साल कंद निकालता है, तो
0: जी
1: आप उनको अलग अलग करके आसानी से लगा सकते
0: जी
1: हैं।
0: तो अब जब हम ये कंद लगा रहे हैं तो प्रति एकड़ इनकी कितनी मात्रा लगती है?
1: प्रति एकड़ आप इसको 45x50 की स्पेसिंग पे लगाते हो सेंटीमीटर में, तो अगर हम कंद से लगाते हैं तो इसके लिए 1 लाख से 1.5 लाख कंद की आवश्यकता होती है
0: प्रति एकड़?
1: प्रति एकड़।
0: जी और यदि बीज लगाते हैं तो कितने बीज लगते हैं प्रति एकड़?
1: अगर आप गेंदे का लगा रहे हैं 1 से 1.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की ज़रूरत होती है।
0: जी तो ये तो हमने जाना है कि कितने बीजों की आवश्यकता फूलों की खेती में लगती है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हमने बीजों का रोपण कर दिया या कंदों का रोपण कर दिया, उसके बाद क्या क्या इसमें कृषि कार्य किए जाते हैं?
1: आपको समय समय पर सिंचाई देनी रहेगी, उसके बाद खाद खाद आपको अगर आप गोबर खाद या केचुआ खाद यूज़ कर रहे हैं तो आप वो 5 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ करिए, या फिर 10 किलोग्राम हेक्टेयर। फिर उसके बाद आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देना पड़ेगा, जो कि हर फसल का अलग अलग अनुपात रहता है,
0: जी
1: और जो नाइट्रोजन रहता है उसको आप पहले एक बार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को एक ही डोज में

0: देना रहता है, पर
1: जी
0: जो नाइट्रोजन रहता है उसको दो डोज में देना रहता है, पहला एक जब आप फसल लगा रहे हैं और एक जब फसल में फूल आने वाले रहते हैं,
1: जी
0: तब दो बार आपको नाइट्रोजन खाद देनी पड़ती है।
1: तो इस बीच कितने दिन का अंतराल रहता है?
0: ये फूल के ऊपर निर्भर करता है कि वो फूल कब देना शुरू कर रहे हैं।
1: जी
0: अगर ध्यान से देखें तो आपको 1 से 1.5 महीने के बीच में देना पड़ेगा।
1: जी जैसे आपने सिंचाई की बात की कि जब हम फूलों की खेती करते हैं तो इसमें कृषि कार्य के रूप में सिंचाई हमको समय समय पर करना पड़ती है, तो इस गर्मी के मौसम में कब कब सिंचाई करना पड़ती है?
0: देखिए, गर्मी के मौसम में पानी की कमी होती है, तो सबसे
1: जी
0: पहले हमें ड्रिप इरिगेशन का यूज़ करना चाहिए।
1: जी
0: और अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप अगर नाली सिंचाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको हफ्ते में 2 बार तो
1: जी
0: देना ही है, और अगर पानी आपके पास और है
1: जी
0: तो आपको हफ्ते में 3 बार देना चाहिए,
1: जी
0: जिससे फसल अच्छी उत्पादन हो
1: जी
0: सके।
1: और यदि इस बीच मानसून आ गया है तो फिर उसमें सिंचाई की कब कब आवश्यकता रहती है?
0: अगर बीच में मानसून आ गया है तो फिर आप हफ्ते में 1 बार सिंचाई कीजिए।
1: जी अब हमारा अगला प्रश्न है कि जैसे हमारा जो निमाड़ क्षेत्र है बहुत गर्म क्षेत्र कहलाता है, तो इस क्षेत्र के हिसाब से कौन कौन सी फूलों की किस्में हमारे किसान भाई लगा सकते हैं?
0: फूलों की किस्में देखें तो अगर हम गेंदे की बात करें तो पूसा नारंगी गेंदा और पूसा बसंती गेंदा,
1: जी
0: ये दो किस्में ऐसी है जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। फिर इसके अलावा अगर हम ट्यूबरोस या रजनीगंधा की बात करें तो उसमें आप लगा सकते हो रजत रेखा, स्वर्ण रेखा, प्रज्वल, ये दो तरह की होती है, एक सिंगल और एक डबल। तो अगर आप सिंगल में लगा रहे हैं तो प्रज्वल सुहासिनी, रजत रेखा, और डबल में लगा रहे हो तो कलकत्ता डबल, श्रीनगर डबल, ये इसकी प्रमुख किस्में हैं। फिर उसके बाद अगर आप जैसे जीनिया हो गया, जीनिया के लिए जाइंट डहेलिया, फिर लिलीपुट, फिर सूरजमुखी की हो गई सनरिच ऑरेंज, फिर टेडी बियर, ये इसकी वेराइटियाँ हैं।
1: जी तो ये सारी वैरायटी हैं वो हमारे निमाड़ क्षेत्र के तापमान के हिसाब से उपयुक्त हैं और किसान भाई इनको लगा सकते हैं। जो ये किस्में आपने बताई हैं तो ये किस्में कितने दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती हैं?
0: ये सारी किस्में जो रहती है ये 1 से 2 महीने के बीच में आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी।
1: जी मतलब गेंदे की भी और रजनीगंधा की भी सूरजमुखी की भी
0: हाँ,
1: सारी। तो जब ये उत्पादन इनका शुरू होता है शिवानी जी, तो उस समय हमारे किसान भाई किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि उनको इसकी गुणवत्ता भी अच्छी प्राप्त हो फूलों की और उत्पादन भी अच्छा मिले?
0: देखिए, जब फूल आते हैं तो सबसे ज़्यादा आती है कीट और बीमारियों का प्रकोप,
1: जी
0: तो आप सबसे पहले कीट और बीमारियों से बचाइए, उसके बाद समय समय पर सिंचाई करते रहिए क्योंकि पानी की कमी से फूल मुरझाने लगते हैं,
1: जी
0: और उसके बाद आप उसमें खाद मिलाइए, खाद देते रहिए। फिर उसके बाद अगर आप हो सके तो पौधों को मल्चिंग प्रोवाइड कराइए जिससे पानी बचा रहे।
1: जी तो हम ये जानना चाहते हैं कि फूलों की खेती के लिए मल्चिंग किस प्रकार से उपयुक्त रहता है?
0: मल्चिंग देखा जाए क्यों करते हैं, क्योंकि पानी को आप जमीन की सतह से बचा सके,
1: जी
0: तो उसके लिए आप काली मल्च का यूज करते हैं जो कि 20 गज की रहती है। उसके अलावा ये जो रहती है ये धूप से बचाती है और
1: जी
0: पानी को
1: पानी की मात्रा कम
0: कम
1: लगती है
0: कर
1: इसमें? जी
0: लगती है। उसके अलावा ये जो खरपतवार रहते हैं उनको भी कम करता है, जिससे पौधों की गुणवत्ता में और निखार आता है।
1: जी अब जैसे आपने बात की थी इसमें रोग और कीटों की, तो फूलों की खेती में कौन कौन से कीट और रोग लगने की संभावना रहती है?
0: फूलों की खेती में सबसे ज़्यादा लगता है थ्रिप्स, एफिड, लाल मकड़ी कीड़ा और बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो पौधों को खराब करते
1: जी
0: हैं।
1: तो जो अभी आपने फूलों की बात की कि जो विभिन्न प्रकार की जो आपने वैरायटियां बताई हैं, तो इन सारे फूलों में एक जैसी बीमारियां और कीट लगते हैं?
0: हाँ, इन सारी फूलों में एक जैसी बीमारियाँ, थ्रिप्स और एफिड तो ऐसे कीड़े हैं जो सभी फूलों में लगभग लगते
1: जी
0: हैं।
1: तो फिर इनके नियंत्रण के लिए किसान भाई क्या उपाय करें?
0: देखिए, आप दो तरीके से इनका नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो आप पौधों को वैज्ञानिक तरीके से, जिसमें आप केमिकल का यूज़ करके
1: जी
0: आप नियंत्रण कर सकते हैं, और एक विधि रहती है जिसमें आप पौधों को जो रोगग्रस्त है उसको हटा सकते हैं,
1: जी
0: नीम ऑयल। और आजकल तो जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिसमें अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, इन सब का भी उपयोग किया जाता है।
1: जी मतलब हमारे किसान भाई रासायनिक विधि तो अपनाते ही हैं पर इनको कीट और बीमारी नियंत्रण के लिए जैविक विधि का उपयोग भी किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: तो शिवानी जी ये तो आपने फूलों की खेती से संबंधित बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि आप हमारे किसान भाइयों से फूलों की खेती से संबंधित क्या कहना चाहती हैं?
0: मैं यही कहना चाहूंगी कि अधिक से अधिक किसान फूलों की खेती करें क्योंकि ये हमें

0: दूसरा मुनाफा देता है। पहला मुनाफा तो आपको आपकी फसल दे ही रही है, इसके अलावा ये आपको दूसरा मुनाफा भी देती है, क्योंकि फूल आजकल देखा जाता है कि मंदिरों और पूजा घरों
1: हर जगह
0: हर
1: लगता है।
0: जगह यूज हो रहे हैं,
1: जी
0: तो आप ज्यादा से ज्यादा आर्थिक स्थिति के लिए इनका यूज कर सकते हैं। आजकल तो ट्रेडिशनल गुलाल जो बनता है वो भी फूलों से ही बन
1: जी
0: रहा
1: जी
0: है, फिर चाय बनती है फूलों
1: इत्र
0: की,
1: बनता है।
0: इत्र बन रहा
1: जी
0: है, जो आपकी अधिक इनकम के लिए लाभदायक रहेगा।
1: जी मतलब सिर्फ एक फूल उत्पादन लेकर हम इसके कई सारे प्रसंस्करण द्वारा आर्थिक मुनाफा कमा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो अंत में मैं जानना चाहूंगी कि प्रति एकड़ फूलों से किसान भाई कितनी आय प्राप्त कर सकते हैं।
0: देख सकते हैं कि फूलों की खेती से हमें कम से कम 4 से 5 लाख प्रति एकड़ मुनाफा मिल सकता है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे किसान भाई इन थोड़े समय में इतना ज़्यादा फूलों की खेती से उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और आर्थिक मुनाफा कमा सकते हैं। तो शिवानी दशोरे जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने फूलों की खेती से संबंधित इतनी अच्छी और लाभकारी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। आशा है कि वो इन गर्मियों के खाली समय में इसकी खेती का लाभ उठाएंगे और आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: भाई बहन भणी, अभी हम सुनी रहा था गर्मी में फूलने की खेती विषय पर ये भेंटवार्ता। जानकारी दे रही थी कुमारी शिवानी दशोरे। न भाई बहन भणी, अब समय हो चुक्यो आज का कृषि समाचार को। आज का कृषि समाचार इन प्रकार से छे। प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत किसान भाई नक कृषि की नई तकनीक, उन्नत खेती, प्राकृतिक कृषि और शासन की जन कल्याणकारी योजना से अवगत कराने का लेन जिला का सभी विकासखंड में एक एक कृषि रथ संचालित किया जाए रोज, जो कि 25 मई तक चलाया जाएगा। ये कृषि रथ प्रतिदिन 3 गांव न में घूमेगा, जेका में कृषि विभाग अरु संबंधित सदस्य नका द्वारा कृषि से संबंधित विभिन्न जानकारी किसान भाई नक दी जाएगा। अभियान का माध्यम से किसान भाई नक कृषि विविधता, उन्नत बीज, स्वास्थ्य प्रबंधन, जैविक अरु प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, आधुनिक कृषि यंत्र का उपयोग की जानकारी दी जाएगा। साथ किसान भाई नक प्रधानमंत्री सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उद्यानिकी पोर्टफोलियो, मत्स्य पालन आरु कृषि सलाह भी दी जाएगा। इन अभियान को मुख्य उद्देश्य किसान भाई नका तक शासन की योजना का पहुँचाणु आरु उनका आधुनिक न टिकाऊ खेती का लेंड प्रेरित करनु छे। ये था आज का कृषि समाचार। न अव जानकारी मौसम की, आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर हो, न सूर्यास्त शाम 7 बजे हो। न आज का दिन को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहो, न रात को तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना छे। भाई बहनोनी, मौसम की जानकारी का बाद अब सुनी ले माज एक अरु निमाड़ी भजन, जेख गायज जयराम सावनेर अरु साथी ननो।

0: आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं हरि नारायण शर्मा की लिखी झलकी मैरिज एनिवर्सरी।
1: हे भगवान, ऐसा भुलक्कड़ और लापरवाह पति किसी को ना दे। सवेरे जब ऑफिस जा रहे थे कम से कम 10 बार जनाब को घर जल्दी आने को बोला था, लेकिन क्या मजा जो जनाब जल्दी घर आ जाए।
2: सीमा, सीमा, अरे भाई जल्दी दरवाजा खोलो, कहाँ हो?
1: चूल्हे में।
2: चूल्हे में? अरे वहां क्या कर रही हो? जल्दी बाहर निकलो वरना जल जाओगी।
1: मैं जलूं या मरूं तुम्हें क्या?
2: पर हुआ क्या है, जरा हम भी तो सुने कि ये त्योरियां क्यों चढ़ी हुई हैं।
1: तुम्हें कुछ याद भी रहता है, सवेरे जब तुम ऑफिस जा रहे थे तब मैंने कितनी बार कहा था कि घर जल्दी आ जाना, पर मेरी कौन सुनता है। बैठ गए फटीचर दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में।
2: तुम भी कमाल करती हो सीमा। अरे ऑफिस से सीधा घर चला आ रहा हूँ, ये देखो अभी सिर्फ 7 बजे हैं और 6 बजे ऑफिस से निकलता हूँ, और ट्रैफिक की हालत तो तुम जानती हो, ऑफिस से घर आने में कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है।
1: अगर कैसे रह गई है तो वापस चले जाओ।
2: तुम तो बस बात बात पे झगड़ना जानती हो। खैर ये बताओ कि मुझे जल्दी घर आने के लिए क्यों कहा था? हाँ, और आज ये बंठन कर कहाँ जाने का इरादा है?
1: तुम्हें दोस्तों के अलावा कुछ याद भी रहता है? कुछ याद है कि आज कौन सी तारीख है?
2: तारीख भाई 24 अप्रैल।
1: हाँ, 24 अप्रैल हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है?
2: 24 अप्रैल महत्वपूर्ण? अरे हाँ याद आया, आज तो हमारी शादी की सालगिरह है, यानी मैरिज एनिवर्सरी। अब याद आया कि आज आप मुझे ऑफिस से जल्दी घर आने के लिए क्यों कह रही थी, और आप ये सज धज कर क्यों बैठी हैं? भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे।
1: बस बस रहने दो।
2: अगर तुम सवेरे ही मुझे बता देती तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आता।
1: अब मुंह देख के बात मत करो, जिस आदमी को अपनी शादी की सालगिरह के ही याद नहीं रहा है उससे गिफ्ट की क्या उम्मीद की जा सकती है।
2: अच्छा बाबा माफ कर दो, कान पकड़ कर माफी मांगता हूँ, और कहो तो हमेशा की तरह कान पकड़ कर उठक बैठक लगा लूं। अरे लगा ही लेता हूँ, इक्कम एक, दुक्कम दो, तिक्कम तीन।
1: अरे अरे क्या कर रहे हो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा?
2: तो बोलो माफ किया।
1: अच्छा बाबा माफ किया।
2: हाँ ये हुई ना बात। अब जरा मेरे पास में बराबर में आके बैठो ताकि हम आज का प्रोग्राम तय करें।
1: अच्छा पहले तुम बताओ कि तुमने क्या सोचा है।
2: अरे फिर तुम वहाँ मुड्ढी पर क्यों बैठी हो, यहाँ सोफे पर मेरे बराबर में आकर बैठो ना।
1: नहीं नहीं मैं भला आपके बराबर कैसे बैठ सकती हूँ?
2: क्यों मेरे बराबर में क्यों नहीं बैठ सकती?
1: अभी कल ही मैंने गुरुजी के प्रवचनों में सुना कि पत्नी का बैठने का स्थान पति से नीचा होना चाहिए, और प्रवचनों में ये भी कहा गया कि पत्नी तो पति के चरणों की दासी होती है।
2: हैं? और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? देखो सीमा, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ कि क्या तुम वही सीमा हो जिससे मेरी 30 साल पहले शादी हुई थी?
1: मैं तुम्हारी वही 30 साल पहले वाली सीमा हूँ।
2: देखो सीमा, तुम ये किन दकियानुसी बातों को लेकर बैठी हो, अरे ये सब पुरानी बातें हैं, आज के जमाने में तो पति पत्नी दोनों बराबर हैं, और वैसे भी पति पत्नी तो गृहस्थी की गाड़ी के तो पहिए हैं, अब अगर इनमें से एक पहिया भी कमजोर पड़ा तो ये समझ लो कि गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है।
1: अब तुम कुछ भी कहो पर मैं तुम्हारे बराबर नहीं बैठ सकती।
2: ठीक है, अगर तुम सोफे पर मेरे बराबर में नहीं बैठ सकती तो मैं दूसरी मुड्डी लेकर तुम्हारे बराबर में बैठ जाऊंगा।
1: अगर तुम मुड्डी पर बैठोगे तो मैं चौकी पर बैठ जाऊंगी।
2: अच्छा, और अगर मैं भी चौकी पर बैठ गया
1: तो मैं पीढ़े पर बैठ जाऊंगी।
2: और अगर मैं भी पीढ़े पर बैठ गया
1: तो मैं जमीन पर बैठ जाऊंगी।
2: और अगर मैं भी जमीन पर बैठ गया
1: तो मैं जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगी।
2: और अगर मैं भी जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें बैठ गया
1: तो मैं तुम्हारे ऊपर उस गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगी।
2: क्यों?
1: हाँ नहीं तो क्या, इतनी देर से बहस किए जा रहे हो, ये नहीं कि आज का प्रोग्राम क्या है बताओ।
2: अरे हाँ, इस बेकार की बहस में मैं ये तो भूल ही गया था कि आज हमारी

0: शादी की सालगिरह है। हाँ देखो अभी बजे हैं 7:30। हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में चलकर खाना खाते हैं और उसके बाद फिर नाइट शो में पिक्चर देखने चलेंगे।
1: पिछले साल भी तो हमने यही किया था, इस बार मैं कुछ नया करने की सोच रही
0: हूँ। सोच तो मैं भी कुछ नया ही करने की हूँ, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ तो बताओ तुम क्या नया सोच रही हो।
1: मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज बाहर जाने की बजाय घर में ही कुछ बनाया जाए।
0: हाँ भाई ये भी अच्छा आइडिया है। तो क्या खास बनाने की सोच रही हो।
1: अब तुम्हें तो पता ही कि मैं मलाई कोफ्ता बहुत अच्छा बनाती हूँ।
0: हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम मलाई कोफ्ता और मटर पनीर बहुत अच्छा बनाती हो।
1: तो ठीक है, तय रहा कि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, मैं घर पर ही मलाई कोफ्ता, मटर पनीर की सब्जी और कड़ी पकौड़ा बना लेती हूँ। तुम हलवाई से 1 किलो रसमलाई और 1/2 किलो बादाम रोल ले आओ। और हाँ, चॉकलेट आइसक्रीम का एक फैमिली पैक लाना मत भूलना।
0: एक मिनट सीमा, तुम शायद ये भूल रही हो कि हमारे बच्चे बाहर गए हुए हैं और घर पर हम सिर्फ दोनों ही हैं।
1: मुझे पता है।
0: अरे तो फिर क्या पूरे मोहल्ले को बुलाने का इरादा है जो बाजार से इतना सामान मंगवा रही हो।
1: मैं सोच रही थी कि हमारी शादी की सालगिरह के जश्न में क्यों ना भैया भाभी और उनके दोनों बच्चों को बुला लिया जाए।
0: यानी घर में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तुम अपने भैया भाभी को उसमें जरूर घुसा लेती हो।
1: मेरे भैया भाभी का आना तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, और पिछली बार शादी की सालगिरह पर तुमने भी तो अपने भैया भाभी को बुलाया था, उसकी क्यों नहीं कहते। वैसे भी तुम्हें मेरे रिश्तेदार फूटी आंख नहीं सुहाते।
0: झूठ, बिल्कुल झूठ। देखो मैं हमेशा अपने रिश्तेदारों के बजाय तुम्हारे रिश्तेदारों की ज्यादा इज्जत करता हूँ।
1: जरा मैं भी सुनो कि मेरे कौन से रिश्तेदारों की अपने रिश्तेदारों से ज्यादा इज्जत करते हो।
0: देखो मैं अपने ससुर की बजाय तुम्हारे ससुर की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी सास की बजाय तुम्हारी सास की ज्यादा इज्जत करता हूँ, अपनी बहन की बजाय तुम्हारी बहन से ज्यादा प्यार करता हूँ।
1: ठीक है अपनी चौंच बंद करो और चुपचाप बाजार जाकर मैंने जो सामान कहा है वो ला कर दो। और कान खोल कर सुन लो, अब अगर मेरे भैया भाभी के लिए कुछ भी कहा तो मैं गुरुजी के प्रवचन में सुनी बातों को भूल जाऊंगी।
0: हाँ ठीक है लाओ थैला और पैसे दो।
1: ये लो थैला। हाँ पैसे मेरे पास है नहीं।
0: क्यों भाई पैसे क्यों नहीं है। अरे अभी परसों ही तो मैंने तुमको 3,000 रुपए दिए थे।
1: हाँ बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 3,000 नहीं 30,000 दिए हो। अरे 3,000 रुपए में तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, वो 3,000 रुपए तो हमारी किट्टी पार्टी में उसी दिन खर्च हो गए थे।
0: क्या तुमने किट्टी पार्टी में 3,000 रुपए खर्च कर दिए। अरे सीमा कितनी बार तुमको समझा चुका हूँ कि पैसे देखकर खर्च किया करो। अरे तुम एक क्लर्क की बीवी हो किसी आईएएस की नहीं।
1: अरे मेरे पिताजी तो मेरे लिए आईएएस ही ढूंढ रहे थे, पर ये तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे जो तुमसे शादी कर ली।
0: अरे तो ना करती, कौन तुम्हारे हाथ जोड़ने गया था।
1: देखो झूठ मत बोलो, तब तो रोजाना सुबह शाम मुझसे शादी करने के लिए मेरे पापा की चौखट पर नाक रगड़ा करते थे।
0: झूठ, सफेद झूठ। बल्कि सच तो यह है कि तुम्हारे पापा खुद अपनी चौखट उखाड़ कर लाए थे मेरी नाक पर रगड़ने के लिए। अरे ये तो मेरी किस्मत टूटी थी जो उनकी बातों में अगर तुम्हारे जैसी भैंस से शादी करनी।
1: क्या कहा, मैं भैंस?
0: हाँ तुम भैंस, तुम्हारी अम्मा भैंस और तुम्हारा पूरा खानदान भैंस।
1: अब खबरदार, जो मेरे खानदान के लिए कुछ जबान खींच लूंगी।
0: अरे जा बड़ी आई जबान खींचने वाली, भीमसेन की औलाद।
1: क्या कहा, भीमसेन की औलाद?
0: हाँ भीमसेन की औलाद।
1: तो ठीक है, अब मैं तुम्हें भीमसेन की औलाद बनकर दिखाती हूँ। कौन है मेरा झाड़ू? अरे कहा, हाँ ये रहा
0: झाड़ू। अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे तो अरे भागो,
1: अरे भागो। जाओगे कहाँ, जहन्नुम तक नहीं छोड़ूंगी तुमको।
2: अरे सीमा बहन, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, कहाँ जा रही हो?
1: जहन्नुम में।
2: क्यों, तुमको जहन्नुम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई?
1: वो गुड्डू के पापा गए हैं ना, उनको लेने जा रही हूँ।
2: पर गुड्डू के पापा वहाँ क्यों गए हैं?
1: आज हमारी शादी की सालगिरह है, इसीलिए वो मेरे लिए बड़ा सा गिफ्ट लेने गए हैं।
2: पर सीमा बहन, आपके लिए तो हरीश भैया गिफ्ट पहले ही ले आए थे।
1: क्या मेरे लिए गिफ्ट?
2: हाँ ये देखिए, हरीश जी कह रहे थे कि आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, इसलिए मेरे पास रखवा दिया था, और कह रहे थे कि मैं 1/2 घंटे बाद आकर आपको दे दूं।
1: क्या वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे?
2: हाँ, और ये भी कह रहे थे कि पहले होटल में खाना खाने जाओगे आप लोग, और फिर उसके बाद मूवी का प्लान है।
1: क्या उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम बनाया,

0: मैं इतनी छोटी सी बात पर उनसे झगड़ा कर बैठी।
1: क्या आज के दिन झगड़ा? ऐसा क्या हो गया?
0: अब क्या बताऊं सरला बहन, उन्होंने बाहर खाने और मूवी का प्रोग्राम बनाया था और मैं अपने भैया भाभी को घर पर बुलाना चाहती थी और इसी बात पर झगड़ा हो गया और वो बाहर निकल गए। हे भगवान, मैं क्या करूं?
2: क्या तुम इतनी सी बात के लिए हरीश भैया से झगड़ पड़ी? अरे सीमा बहन, और वैसे भी आज तो ये दिन तुम्हारा है, आप दोनों को एंजॉय करना चाहिए। भैया भाभी को बुलाने के लिए तो रक्षाबंधन भाई दूज के त्यौहार है ना।
0: मैं भी कितनी पागल हूँ जो आज के दिन उनसे झगड़ा कर बैठी। हे भगवान, वो मुझे मिल जाए तो मैं उनके पैर पकड़कर माफी मांग लूं।
2: सीमा बहन, तो आपको वाकई आपकी बातों पर पछतावा हो रहा है?
0: हाँ सरला बहन, मैं उनसे अब कभी झगड़ा नहीं करूंगी। अब मैं उनको कहाँ ढूंढूं?
3: अरे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है।
0: तो जनाब यहाँ छुपे हैं?
3: हाँ। अरे अब तुमको छोड़कर इस उम्र में भला कहाँ जाऊंगा, और वैसे भी तुमको सरप्राइज जो देना था।
0: तो ये था तुम्हारा सरप्राइज? ओ हरीश, तुम कितने अच्छे हो।
3: अरे अब ये सब छोड़ो, देखो तुम्हारे चक्कर में 8 बज गए हैं और अब जल्दी चलो।
0: अरे सरला बहन, तुम भी चलो ना।
2: सीमा बहन, अभी अभी मैंने क्या समझाया था कि आज का दिन तो आप दोनों के एंजॉय करने का दिन है। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जाइए और जल्दी जाइए, खूब अच्छे से एंजॉय करिए।
0: थैंक यू सर।

तो ये थी झलकी मैरिज एनिवर्सरी। इसके लेखक हरि नारायण शर्मा, निर्देशन किया H.S. व्यास ने। आपको बता दें ये आकाशवाणी के जयपुर केंद्र की भेंट अभी आपने सुनी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तट और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है। वो चर्चा है जल जीवन मिशन की। एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
2: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
3: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गांव में।
4: अच्छा हो गया मेरा,
5: अभी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं
4: ना। अभी नल लगी है तो अच्छा सुकेज करिए सरकार ने।
6: जो टंकी से नल का पानी हो गया बढ़िया हो गया,
4: नल लगी गया।
1: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुँच रहा है। मलय श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
7: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
1: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह,
8: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो JJM के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियाँ, नए जल संरचनाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा। और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले आ पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
1: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता।

0: सकता था। यहां काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहां जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
1: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गाँव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था, लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुँचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंटिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के इस सपने को मिलकर साकार करें।
0: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
2: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
3: कि हमारे वार्ड क्रमांक 1 में जो हमारे को जल कर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक 1 के 1200 रुपये आ गए हैं, वार्ड क्रमांक 2 में 790 रुपये आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक 3 में 2780 रुपये आ गए हैं।
4: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जल कर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी के वेस्टेज नहीं जाने दें, इसके विषय

0: में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं, पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
1: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गांवों में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहां पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुंचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहां।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूर पहला सर जवाब तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाता, माने टाइम बहुत व्यस्त हो जाता पहले, और अब पानी हो गयो तो नल चालू करो, पानी भरियो और मजदूरी भी चले जावा।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है, और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

यमला पगला दीवाना टू इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में, कुमार के बोल थे। फिल्म है ओम शांति ओम, शान उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लाड़ का संगीत।

ओम शांति ओम। फिल्म का गाना आप सुन रहे थे शान, उदित नारायण, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल थे, विशाल शेखर का संगीत था। ये सिंगम फिल्म का गाना है, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजें, स्वानंद किरकिरे के बोल, अजय अतुल का संगीत है।

सिंघम फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं विविध भारती से, थोड़ी देर में आप सुनेंगे

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने सीबीएसई पुनर्

0: मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए आईआईटी मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
2: We want peace and stability.
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
2: Importer of energy and much of it comes from that region.
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंदर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
5: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का

0: पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्विशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जांच CBI को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद

के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। दोस्तों आज जाने माने गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की याद का दिन है, आज का ये कार्यक्रम उन्हीं के नाम। अगला गीत भी उन्हीं का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज़, सचिन देव बर्मन का संगीत, फिल्म पेइंग गेस्ट।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी बोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: आज के फनकार।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में 1 अक्टूबर सन 1919 में हुआ था। उनका असल नाम था असरार उल हसन खान। उनके पिता पुलिस विभाग में थे और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा असरार उल हसन इंग्लिश की पढ़ाई करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को पारंपरिक शिक्षा के लिए मदरसे में दाखिल किया और अरबी व फारसी में काबिल बनाकर आलिम। बाद में असरार उल हसन मजरू ने लखनऊ उल तिब कॉलेज से की तालीम भी हासिल की और वो हकीम कहलाए, लेकिन शायराना तबीयत की वजह से वो हकीमी ठीक से कर नहीं पाए और सुल्तानपुर में रहकर गजलें लिखते रहे और मुशायरों में शिरकत करते रहे। तत्कालीन दौर में वो शायर जिगर मुरादाबादी के सानिध्य में भी रहे। हकीम से शायर बनते बनते असरार उल हसन खान की शख्सियत मशहूर शायर मजरू सुल्तानपुरी में कब तब्दील हो गई, ये खुद उन्हें भी पता नहीं चला।

सन 1945 में मजरू सुल्तानपुरी तत्कालीन बॉम्बे शहर में साबू सिद्दीक इंस्टीट्यूट में एक मुशायरे के सिलसिले में आए और अपनी पुरअसर शायरी से सुनने वालों के दिलों पर छा गए। सुनने वालों में उस समय जाने माने फिल्मकार A.R. कारदार भी शामिल थे। वो मजरू साहब से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने जिगर मुरादाबादी के जरिए मजरू से संपर्क किया और संगीतकार नौशाद से मजरू साहब की मुलाकात तय कर दी। दौर था 1946 के साल का, फिल्म थी शाहजहां और फनकार थे K.L.

वामपंथी विचारधारा के समर्थक मजरू सुल्तानपुरी ने 1949 में बलराज साहनी के साथ कुछ समय जेल में भी बिताया। आर्थिक रूप से कमजोर भी हुए, लेकिन सिद्धांतों से कभी भी समझौता नहीं किया।

0: मैं।
1: 1950 से लेकर 1960 के पूर्वार्ध तक मजरू सुल्तानपुरी भारतीय सिनेमा में अपनी गीतकारी के साथ पूरे शबाब पर रहे। सन 1965 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म दोस्ती के एक गीत के लिए फिल्म फेयर के श्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मजरू साहब को प्रदान किया गया।

दोस्तों, मजरूह सुल्तानपुरी ने हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया, जैसे नौशाद, मदन मोहन, एसडी बर्मन, रोशन, रवि, शंकर जयकिशन, ओपी नैयर, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आरडी बर्मन, अनु मलिक, राजेश रोशन से लेकर आनंद मिलिंद, जतिन ललित और एआर रहमान तक सभी के संगीत में मजरू ने अपने बोल पिरोए।

आरडी बर्मन के संगीत में भी मजरू के गीतों ने कई बार धूम मचाई, चाहे वो फिल्म तीसरी मंजिल हो या हो जमाने को दिखाना है। सभी गानों ने सुनने वालों के कदमों को थिरकाया है।

24 मई सन 2000 को न्यूमोनिया बीमारी के गंभीर हमले से मजरू साहब उबर नहीं पाए और मौत ने आखिरकार उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। जिंदा दिल शायरी का मतवाला और रूह को छू लेने वाले गीतों का ये रचयिता बेशक आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने गानों के जरिए सदा हमारे दिलों पर राज करता रहेगा।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस वक्त आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
0: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। तुम्हें बस तुम्हें साथ लेकर चलना है जीवन की हर राह पर, हर कदम पर, क्योंकि अधूरे हैं तुम्हारे बिना सारे सपने, क्योंकि तुमने रंग भरे हैं जीवन के हर खांचे में। तुम्हारे होने से गीत बन गई है ये जिंदगी, सुर खोले हैं तुमने अपनी मुस्कानों से।

मन की उड़ान धरती और आसमान के परे है। मन की उड़ान शहरों, समंदरों, पहाड़ों और घाटियों के पार जाती है। खींचा चला जाता रहा मन तुम्हारी तरफ, तुम्हारे आने से बहुत पहले से। बहुत पहले से तुम्हारा था ये मन, तुम्हारी तरफ खींचा चला जाता रहा सदियों से। सदियों के सफर में तुम हो हमारे मन का सुकून।

तुम्हें देखना सिर्फ तुम्हें देखना नहीं है, जब तुम्हें देखते हैं हम तो अपने सपनों को जीते जागते देखते हैं। हम देखते हैं तुम्हारी आंखों की चमक, तुम्हारे बिखरे बालों की अदा, तुम्हारा

0: छाया गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये गाना।
1: उल्फत में जमाने की हर रस्म को ठुकरा।
0: हम अभी हाजिर हुए

दुनिया की रीत है, प्यार की राहों में दुनिया अड़चने खड़ी करती है, पर प्यार करने वाले तमाम रास्तों, रस्मों और तरीकों से अलग अपने नए रास्ते तैयार करते हैं। प्यार की राहें बस राहें होती हैं उनके लिए, इन पथरीली राहों पर सुनहरी जिंदगी उनका इंतजार करती है।

दुनिया की जुल्मतों और परेशानियों के बीच चमकता रहे मुस्कान का सूरज, सीने में जब दर्द का तूफान उठे तो भी छलक न पड़े आंखें, होंठों पर पड़ी मुस्कान की चादर छिपा ले सब कुछ, सिर्फ तुम्हें पता हो कि क्या चल रहा है मन के भीतर। दुनिया के लिए मुस्कान हमारा परचम है।

अक्सर जिंदगी में चीजें देर से मिलती हैं या नहीं मिलती, अक्सर नहीं ही मिलती कुछ चीजें दुनिया में। ये कमियां, ये तकलीफें, ये अड़चने जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। कई बार दर्द भी दिल के भीतर फूल खिलाता है।

0: छाया गीत में आज नक्श लाहिलपुरी के नगमे थे, फिल्मों के नाम, फिल्म तुम्हारे लिए। फिल्म मिलाप,
1: कई सदियों से कई जन्मों।
0: फिल्म दिली नादा,
2: चांदनी रात में।
0: फिल्म कॉल गर्ल,
1: उल्फत में जमाने की।
0: फिल्म दर्द,
3: दर्द सीने में छुपा ले।
0: और फिल्म आहिस्ता आहिस्ता।
2: माना तेरी नजर में।
0: आज का छायागीत इतना ही, इजाजत दीजिए यूनुस खान को, नमस्कार। ढलती जाए रात।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविधा विविधा विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
4: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
5: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
4: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
6: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
4: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा

0: सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
2: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
1: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government